आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग

MBC Radio, your music companion.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: This is Radio Mauritius.
2: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

दिव्यैस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषदेर गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्शान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस विशेष कार्यक्रम में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। जन्माष्टमी का महान पर्व, श्रोताओं ये पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात्रि के समय जब चंद्रमा वृष राशि में था उस समय हुआ। ऐसा योग हमेशा मिलता तो नहीं है, लेकिन अधिकांश उपासक जो हैं इनमें से अपने अपने अभीष्ट योग का ग्रहण करते रहते हैं। परंतु सिद्धांत रूप से अर्धरात्रि में मिलने वाली तिथि अधिक मान्य होती है, जो इस वर्ष 4 सितंबर शुक्रवार को पड़ रही है। श्रोताओं, ये त्यौहार हिंदू समाज में अत्यंत लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का और सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि केवल जन्माष्टमी कह देने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बोध हो जाता है, है ना। और सनातन धर्मानुयायी नर नारी आबाल वृद्ध इसका पालन करके अपने को बहुत धन्य मानते हैं, पवित्र मानते हैं। श्रोताओं, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का अवतार प्रमुख 10 अवतारों में से सर्व प्रमुख अवतार है। अन्य अवतार परब्रह्म के पूर्ण अवतार तक नहीं माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी 12 कलाओं के अवतार माने जाते हैं, परंतु भगवान कृष्ण को 16 कलाओं का पूर्ण अवतार कहा। श्रीमद् भागवत महापुराण ने कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके पूर्ण ब्रह्म घोषित किए जाने का आधार वास्तव में मनुष्य के रूप में किया गया उनका क्रियाकलाप भी है। उन्होंने अधर्म का उन्मूलन करके धर्म की स्थापना की, अन्याय और असत्य को दबा करके न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा की। भगवद गीता में स्वयं अपने मुखारविंद से उन्होंने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की उन्नति होती है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। श्रोताओं, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार अद्वितीय रूप में हुआ। उस समय के अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण है कि उनका जन्म कंस के जेल में हुआ था। समझ लीजिए कि कितना अत्याचार उस समय हो रहा था कि भगवान को जेल में अवतरित होना पड़ा। उनके माता पिता बहुत दिन पहले से ही जेल की यात्रा और भुगत रहे थे, जबकि वे कंस के अपने बहन और बहनों ही थे, और जन्मते ही उन्हें चुपचाप गोकुल में और नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया गया। मथुरा में जन्म हुआ और कहां पहुंचा दिया, गोकुल गांव में पहुंचा दिया। अंधकारमयी अर्धरात्रि, चारों ओर भयानक सन्नाटा, आकाश में घनघोर घटाओं का राज्य। इस प्रकार प्रकृति भी तो समाज के उस काले चित्र को प्रस्तुत कर रही थी। कुशासन की काली माँ चारों ओर व्याप्त थी। जनता के हृदय में निराशा की घटाएं और घिरी हुई थी। लोग असहाय होकर के सन्नाटे की दशा में पड़े हुए थे। ऐसी परिस्थिति में अपने दिव्य आलोक से काली घटाओं को चीरते हुए जन मन अधिनायक आनंद कंद व्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र और उदित हुए। श्रोताओं, इससे लोक की निराशा में आशा का संचार हुआ। भक्तों के हृदय जो है प्रफुल्लित हुए और संत महात्माओं को नवीन संबल प्राप्त हुआ। आज उनके अवतार को 5000 से ज़्यादा वर्ष बीत गए हैं, किंतु समय की ये लंबी अवधि इस दिन के हर्ष और उल्लास की स्मृति को फीकी नहीं कर पाई। श्रोताओं, आज भी हम उसी उत्साह में और इस उत्सव को मनाते हैं जैसे उस समय के ब्रजवासियों ने मनाया होगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन श्रोताओं अनेक अलौकिक विशेषताओं से युक्त है। अन्य अवतारों में किसी एक आदर्श की स्थापना की गई, परंतु भगवान कृष्ण का जो जीवन है ना,

कला कौशल, उनका सौंदर्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाज, सामान्य जन तथा ज्ञानी पुरुष आदि से संबंधित विविध क्षेत्रों में समान रूप से व्याप्त है। वे सत्य के आधार पर सुंदरता के साथ कल्याण के नियामक थे। उनका जीवन सत्यम, शिवम, सुंदरम का अद्भुत समन्वय था। उनके व्यवहार की गहनता और आचार की रहस्यात्मकता समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। वे रास लीला रचाते थे, लेकिन महायोगेश्वर भी थे। एक सामान्य गृहस्थ के बालक के समान गोप बालक थे, तो भगवत गीता जैसे गूढ़ ज्ञान के प्रकाशक भी तो थे। उपद्रव बचाने के लिए ब्रज का त्याग किया, किंतु महाभारत के संचालक भी थे। सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण के सहपाठी और मित्र थे, और सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी थे। अनेक दुष्ट राजाओं को पदच्युत किया, किंतु स्वयं उनके स्थान पर राजा नहीं बने। श्रोताओं, भक्तों की रक्षा की और उनका अपना परिवार सुरक्षित नहीं रह पाया। ऐसी विविधताओं में अनेक रहस्य भरे पड़े हुए हैं श्रोताओं इनका, और उल्लेख जो है पौराणिक कथाओं तथा महाभारत आदि में और विस्तार से किया गया है। उनके जीवन की अनेक घटनाएं श्रोताओं वो सांकेतिक हैं, है ना, सिम्बॉलिकल हैं। इसकी और उनकी तह में न पहुंचने के कारण बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल डालते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएं लोगों को अटपटी मालूम होती है। उनमें से अधिकतर जो है वो रासलीला, चीरहरण का नाम ज़्यादातर लोग लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये शुद्ध अलंकारिक कथा है श्रोताओं, क्योंकि श्रीमद् भागवत एक साहित्य का ग्रंथ भी तो है ना, वो इतिहास नहीं है। इस प्रकार इस प्रकरण में गोपियों और भगवान कृष्ण के रूप में इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों के साथ ब्रह्म का जो इच्छानुमूलन, संयोग और वियोग दिखाई गया है श्रोताओं, है ना, बहुत अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन चरित्र है श्रोताओं, उसको हम इस त्यौहार को मना करके उनके जीवन चरित्र को यदि हम आत्मसात करते हैं तो तभी और हमारा कल्याण होता है। हम और धार्मिक हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखें कि किस तरह से और ऐसी किंकर्तव्य मूड वाली जब परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तो अपने जीवन को हम कैसे स्थिर कर सकते हैं। अब देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध मैदान में अर्जुन सामने किन कर्तव्य मूड होकर के भगवान से पूछा मैं क्या करूं, तब भगवान ने जिस तरह से समझाया है श्रोताओं, हमको भी जीवन में उसको उतार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आज समय यहीं पर समाप्त हुआ चला जा रहा है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति।

0: समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आस्था के साथ है। संध्या नमस्कार आपको आस्था।
1: नमस्कार, 6 बजे की समाचारों में स्वागत है आप सभी का। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार सुबह 10 बजे तक लागू रहेगी। आज हवा के झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र बहुत खराब रहेगा और लहरें 4 से 6 मीटर तक पहुंच सकती हैं। मछुआरों, नाव चलाने वालों और आम लोगों को समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह दी गई है। सड़क पर गंभीर नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती की तैयारी में है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में पेश करने की मंजूरी दी। गंभीर मामलों में गाड़ी जब्त करने और शराब या ड्रग्स के असर में गाड़ी चलाने वाले लोगों सहित कई अन्य अपराधों के लिए सजा कड़ी करने का प्रावधान है। करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर आज अगले कुछ हफ्तों में फिर से खुल सकता है। सरकार पोटली थिएटर और प्लाजा के संचालन के लिए सरकारी और निजी सेक्टर की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है। विदेश स्तर पर नेपाल के उत्तरी इलाकों में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं और प्रभावित इलाकों में तलाश तथा बचाव अभियान जारी है। और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मॉरिशस में तेज हवा और ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी है। ये चेतावनी सोमवार 31 अगस्त सुबह 10 बजे लागू रहेगी। मस्करीन्स के दक्षिण में बने मजबूत उच्च दबाव के क्षेत्र के कारण देश में तेज हवा के साथ ठंड का असर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, खासकर पूर्व दक्षिण और मध्य के ऊंचे इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। ऊंचे इलाकों में दिन का तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात में ऊंचे इलाकों में तापमान 13 से 15 डिग्री और समुद्री किनारे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा दक्षिण पूर्व से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कुछ जगहों पर हवा के तेज झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लोगों को हवा में उड़ने वाली चीजों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऊंची इमारतों और दूसरे ऊंचे ढांचों पर काम करने से बचें। खुले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय भी खास सावधानी बरतें। सूर्योदय 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

الكتاب صدق الله العظيم. मज़ी सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की. परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे. आमीन. पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं.

जहाँ तक हाथ पहुँच सकते थे। यह हदीस हमें सिखाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला की पनाह हासिल फरमाते थे। सूरह इखलास में अल्लाह ताला की तौहीद और अजमत का बयान है, जबकि सूरह फलक और सूरह नास में हर किस्म के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है। इस सुन्नत पर अमल करने से बंदे के दिल में ये यकीन मजबूत होता है कि हकीकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी सोने से पहले ये सूरतें पढ़ने की आदत डालें, ताकि उनकी रात अल्लाह ताला के जिक्र और कुरान करीम की बरकत से

0: सलामत है बोलो।
1: मोहतरम सामीन, रात को सोने से पहले अपने दिन का अख्तिताम अल्लाह ताला की याद से करना चाहिए। वजू करके सोना, दाएं करवट लेटना और मसनून दुआएं पढ़ना हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत सुन्नतें हैं। सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की आदत बनाएं। अपने बिस्तर को साफ करें और एहतियात का ख्याल रखें। मोबाइल फ़ोन और फजूल मशागिल में वक्त ज़ाया करने के बजाय चंद लम्हे अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए ज़रूर निकालें। हमें मालूम नहीं कि हमारी कौन सी रात आखिरी रात हो, इसलिए हर रात तौबा, दुआ और ईमान की हालत में सोने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए सबाल खैर के आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

0: RM3 रेडियो।
1: भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नितुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं और ये है भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, पर क्या कभी हमने सोचा है कि भक्ति का मार्ग आसान है या कठिन? भक्ति का मार्ग देखने में बहुत सरल लगता है श्रोताओं, पर अंदर से वो उतना ही गहरा, पवित्र और अनंत समर्पण से भरा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति आसान है क्योंकि इसमें ना कठिन विधि है, ना कुछ पाने का दबाव, सिर्फ एक कोमल सा प्रेम, एक शुद्ध सा मन और एक सच्चा सा विश्वास चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति कठिन है क्योंकि सबसे बड़ा संघर्ष तो अपने ही मन से होता है।

भक्ति का मार्ग तब आसान होता है जब इंसान अपने आप को छोटा बना देता है, अपनी अहंकार की दीवार गिरा देता है और ईश्वर के आगे एक बच्चा बनकर खड़ा हो जाता है। जिस पल मन कह देता है प्रभु मैं आपका हूँ, उस पल से जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है, रास्ते रोशन हो जाते हैं और हर कदम पर एक अद्भुत शांति साथ चलने लगती है।

ये मार्ग तब मुश्किल पड़ता है जब हम अपने विचारों, अपनी चिंताओं, अपने गुस्से, अपने अहंकार और चिंता से मुक्ति नहीं पा पाते। भक्ति में सिर्फ हाथ जोड़ना ही नहीं, मन को जोड़ना पड़ता है। सिर्फ आरती करना ही नहीं, दिल से समर्पण करना पड़ता है। सिर्फ मंत्र बोलना ही नहीं, उन्हें जीना पड़ता है।

सच्चाई ये है श्रोताओं कि भक्ति ना पूरी तरह आसान है ना पूरी तरह मुश्किल। वो उतनी ही आसान होती है जितना हम अपने मन को हल्का कर लें, और उतनी ही मुश्किल जितना हम अपने मन को पकड़ कर रखें। पर एक बात पक्की है, जो एक सच्चा कदम ईश्वर की तरफ बढ़ाता है उसकी तरफ से 100 कदम प्रभु की दया बढ़ जाती है। तब ये मार्ग सिर्फ आसान नहीं होती, सुखमय, कोमल और कृपा पूर्ण बन जाती है। भक्ति का मार्ग एक यात्रा है मन से ईश्वर तक। जो शुरुआत कर लेता है उसका पूरा रास्ता दिव्य प्रकाश से

曲安然，共动周末，马吕斯广播电台听众朋友上午好，欢迎收听周日慢歌。

听众朋友，今天的周日慢歌就到这里跟您说再见了，谢谢您的收听，下次节目我们再会。

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से विधिमा आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी सुनने वालों को नमस्कार सुरिचुद में मरियामन कोविल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज सुबह आधारशिला रखने की रस्म आयोजित की गई जिसके निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ और फिर अपने भाषण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक दिशा सूचक का काम करते हैं पर्यावरण पुलिस ने डीजल वाहनों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन की जांच के लिए शुक्रवार 28 अगस्त को पोटली में स्मोक अभियान चलाया इस अभियान के दौरान कुल 5 चालान काटे गए जांचे गए वाहनों में धुएं का ओपेसिटी स्तर अनुमत सीमा 50% से काफी अधिक पाया गया दर्ज किए गए आंकड़े 92.5% और 98.6% के बीच थे संबंधित वाहनों पर आवाजाही प्रतिबंध के नोटिस दिए गए और प्रत्येक चालक पर ₹10,000 का निश्चित जुर्माना लगाया गया यह अभियान सड़कों पर अत्यधिक धुएं के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नियंत्रण कदमों का हिस्सा है करीब 18 साल से बंद पोटली थिएटर जल्द ही खुल सकता है कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया ने अगले कुछ हफ्तों में इसे दोबारा खोलने की घोषणा की है इस सिलसिले में गुरुवार 3 सितंबर को उनके मंत्रालय प्रांतीय प्रशासन मंत्रालय और पोटली नगर पालिका के बीच बैठक होगी सरकार पोटली थिएटर और रोसिल के प्लाजा के संचालन के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्राथमिकता दे रही है पोटली थिएटर वर्ष 2008 से बंद है विदेश के खबरों में स्थानीय पुलिस के अनुसार उत्तरी स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए और उधर कीव के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इलाके के पास यूक्रेनी सेना के लिए हथियार रखने वाले डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले के बाद 37 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार महर्षि लेन कोइंसे फ्लैक में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयरानी बिकी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके घर महर्षि लेन कोइंसे फ्लैक से उठाकर कोइंसे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30 अरब लेन कोयलोफ पोटली में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फिफिन मोहाबल पैदाइशी नाम रामहित और जो तौचिन शांति नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी बेटी फिदू मोहाबल के घर अरब लेन कोयलोफ पोटली से उठाकर सिपाही भोले वाले दिपैत की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:00 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है

0: सुहाना सफर।
1: जी हाँ, 12:09 हुए हैं। संडे का दिन है, 30 अगस्त, रविवार 30 अगस्त 2026, 12:09 और हम आ चुके हैं यहाँ पर आपका साथ निभाने के लिए। सुनते हैं, सुनाते हैं, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे, हम गीत चलाएंगे, आप सुनेंगे, है ना। और यही है सिलसिला सुहाना सफ़र प्रोग्राम का। बातों बातों में दोस्ती हो ही गई है और दोस्ती निभाने के लिए हम बेशक हाजिर हुए हैं यहाँ पर, और माइक पर है देविना आप सबों का साथ देने के लिए 3 बजे तक। लंबा सफ़र है दोस्तों, और आप लोग जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं दिल से स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम और ढेरों सारी प्यार भरी शुभकामनाएं। और रविवार का दिन है, थोड़ा आराम, थोड़ी मस्ती, थोड़ी बातें और ढेर सारा संगीत, और जब इन सब का साथ हो जाए तो सफ़र अपने आप सुहाना हो जाता है ना। और लेकर आए हैं इससे पहले 2 घंटों के लिए एकदम रंगीन, मधुर और दिल को छू लेने वाला संगीत सफ़र। और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और आज हम किसी एक कलाकार पर 1-2 गाने चलाएंगे ज़रूर, साथ में आपके कुछ डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट। तो सुहाना सफ़र प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले बस आप लोगों का साथ रहे, यही है हमारी दिल से तमन्ना कि आप लोग हमें सुन रहे हैं ना और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और वैसे कहते हैं ना, जहाँ हर गीत एक कहानी कहता है, ये है सुहाना सफ़र। जहाँ हर धुन को याद जगाती है, सुहाना सफ़र। और हर पल चेहरे पर मुस्कान लाता है, सुहाना सफ़र। तो रेडियो का वॉल्यूम ज़रा बढ़ाइए, दिल के दरवाजे खोलिए और चलिए मेरे साथ यादों की गलियों में, मोहब्बत की राहों में और संगीत के उस सफ़र पर जिसका हर मोड़ सुहाना है। तो चलिए, शुरुआत हमने कर लिया है फिल्म बातों बातों में से, लिया गया खूबसूरत गाना, अगला गाना देश परदेश। किशोरदा की आवाज़ साथ में लता जी।

प्यार भरा गाना था देश परदेश मूवी का गाना और इसमें दिखे थे साथ में देवानंद साहब साथ में द ब्यूटीफुल वेरी यंग उस समय थी टीना मुनीम। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किस पर एक दो गाने चलाने वाले हैं। बस इस प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ बातें शातें होंगी आप सबों के साथ टीना मुनीम पर और कि प्यारी सी स्माइल के साथ आपका वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं इस म्यूजिकल सफर में। जी हाँ, हम याद करेंगे आज उस अदाकारा को जिनकी मासूम मुस्कान खूबसूरत आंखें और ग्रेसफुल पर्सनालिटी ने 70s 80s के सिनेमा को एक अलग ही रंग दिया। जी हाँ दोस्तों, टीना मुनीम एक ऐसा नाम जिसने पर्दे पर आते ही एलिगेंस इनोसेंस और ग्लैमर तीनों को एक साथ पेश किया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज का सुहाना सफर हमें ले चलेगा टीना मुनीम की फिल्मों की ओर उनकी यादगार भूमिकाओं और उन एवरग्रीन गीतों की दुनिया में। तो टीना मुनीम की बात चली तो ये गाना हम पेश न करें ये हो ही नहीं सकता। और सफ़र की शुरुआत तो ऐसे गीतों के साथ हमने कर लिया है जिसमें प्यार की खुशबू है, जवानी की ताजगी और टीना मुनीम की खूबसूरत मौजूदगी। और वैसे टीना मुनीम ने अपने करियर में बहुत कलाकारों के साथ काम किया, उनका जो करियर था दो दशक तक चलता रहा और ज़्यादातर फिल्में उन्होंने की राजेश खन्ना साहब के साथ। और आपको याद है ना सौतन, अगर आपको शादी करनी है तो बस ये गाना फटाफट आप गा लीजिए अपने उनके लिए।

ला ला ला ला ला रॉकी मूवी का गाना था और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो सुहाना सफर प्रोग्राम। मैं हूँ देविना आप सबों के संग 2 बजे तक चलने वाला है स्पेशल आपके कुछ डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट ओल्डीज के 70s 80s और साथ में आज है स्पेशल टीना मुनीम पर पिक्चराइज बबली सी टीना मुनीम पर पिक्चराइज कुछ गाने। दोस्तों वैसे टीना मुनीम ने हिंदी सिनेमा में अपनी जो पहचान है ना बहुत कम उम्र में बनाना शुरू कर दिया था। उनकी खूबसूरती में एक नेचुरल इनोसेंस था और शायद यही वजह थी कि कैमरे उन्हें बेहद पसंद करता था। उनकी शुरुआती फिल्मों में ही दर्शकों ने महसूस कर लिया था कि ये चेहरा सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि अभिनय और भावनाओं को पर्दे पर खूबसूरती से पेश करने की क्षमता भी रखता है। उनका नाम जुड़ा कई यादगार फिल्मों और बड़े कलाकारों के साथ और जब टीना पर्दे पर आती थी तो उनकी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस तुरंत ध्यान खींच देती थी। तो चलिए उस दौर की गलियों में वापस चलते हैं जहां कैसेट प्लेयर बजता था, रेडियो पर फरमाइशी गीत आते थे और एक खूबसूरत गीत पूरा दिन बना देता था। और ऐसे में टीना मुनीम को आप याद कीजिए, चुलबुली सी, नटखट सी, ब्यूटीफुल सी, वो

जा इश्क मेरा बंदगी है, इश्क मेरी जिंदगी है, ये था फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा। और ऐसे में साथ दे रही है हमारा करुणा जी और शुमे खुनिये, और उनको जो गाना हमने चलाया इससे पहले, जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, तो बस ये गाना उनको ज़्यादा पसंद है। और ऐसे गाने सुनकर ना कभी कभी कुछ ऐसे हादसे याद आ जाते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस याद आ जाते हैं जब हम कभी इनसे गुजरे हैं, जब किसी ने हमें धोखा दिया था, जब किसी ने हमारा दिल तोड़ा था। बस ऐसे ही कुछ गाने हैं जो हमें ले जाता है पुरानी राहों में, और कभी कभी खट्टी मीठी यादों के साथ सुहाना सफ़र प्रोग्राम में ऐसे ही कुछ गाने लेकर आते हैं। और इससे पहले वो नवीन जी, उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। नवीन जी नमस्ते, मोहताज ब्लॉन्च के हैं, और हमेशा की तरह आशा भोसले के गाने उनको बहुत पसंद है। और युद्ध वाला जो गाना है ना, वो हम ढूंढ रहे हैं आपके लिए, मगर इससे पहले हमने चलाया आपके लिए नवीन भाई ये जो गाना है, युद्ध से लिया गया, मगर जो दूसरा गाना है हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे बाद में। और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं अभी, आपको बता देते हैं कि हम आपसे जुड़ने वाले हैं 3 बजे तक, मगर 2 बजे से 3 बजे तक होता है स्वीट स्वीट नाइटीज। और आज हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसे गाने सुनाएंगे जो अक्षय कुमार पर पिक्चराइज हो गए, और अक्षय कुमार को बहुत से लोग पसंद करते हैं, उनके गाने हम चलाने वाले हैं 2 बजे के बाद। और इसके बाद, इससे पहले 1 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, और प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे। और वैसे आज बात हो रही है टीना मुनीम की, उनका नाम लेते ही 70s और 80s की रोमांटिक फिल्मों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और ऐसे में ये गाना आपको सुनाते हैं कर्ज, और इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए थे। तो मिलते हैं समाचार के बाद। मैं 16 बरस की, तुम कितने बरस के?

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार सोलिचीड में मारियामिन कोविल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज शिलान्यास विधि संपन्न की गई निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं पर्यावरण पुलिस ने डीजल वाहनों से होने वाले धुएं के उत्सर्जन की जांच के लिए शुक्रवार 28 अगस्त को पोर्ट लुइस में स्मोक डिटेक्शन अभियान चलाया इसके अंतर्गत कुल 5 चालान काटे गए जांचे गए वाहनों में धुएं का ओपेसिटी स्तर अनुमत सीमा 50% से काफ़ी अधिक पाया गया दर्ज किए गए आंकड़े 92.5% और 98.6% के बीच रहे संबंधित वाहनों पर आवाजाही प्रतिबंध के नोटिस जारी किए गए और प्रत्येक चालक पर ₹10,000 का फिक्स्ड पेनल्टी लागू किया गया ये अभियान सड़कों पर अत्यधिक धुएं के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्थानीय पुलिस स्विट्जरलैंड में स्थानीय पुलिस उत्तरी स्विट्जरलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी की में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और पुलिस इसकी जांच चला रही है कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत बताई जाती है उधर रशिया में कीव के बाहरी इलाके में एक रिहायशी इलाके के पास यूक्रेनी सेना के लिए हथियार रखने वाले डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले के बाद 37 लोगों की मौत हुई है लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार शोक समाचार सुनिए अरब लेन कॉन्यूल ऑफ पोर्ट लुइस में अरब लेन कॉन्यूल ऑफ पोर्ट लुइस में 89 साल की 89 years old श्रीमती फिफिन मोहबल पैदाशी नाम रामही जो तोचिन शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी बेटी श्रीमती फिदू मोहबल के मकान अरब लेन कॉन्यूल ऑफ पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले देपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 3 PM महर्षि लेन कॉइचे फ्लैक में 85 साल की 85 years old श्रीमती जयरानी बिकी जो स्वर्गीय डॉक्टर खुसिया की माँ थी इनकी मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे इनके मकान महर्षि लेन कॉइचे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉइचे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 3:30 PM मारामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के 32 years old श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़रा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है इनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मारामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो 2:30 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है
2: ₹94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: क्या आवाज थी और क्या गाना था, दिल को सीधा छू गया। और साथ में हम जानते हैं कि बहुत लोग जो हैं हमें सुन रहे हैं और इस गाने में को से आपका जो मेमोरीज हो ना वो रिफ्रेश हो चुका है। और ऐसे गाने हम सुनते थे कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, और आज ऐसे गाने सुनकर ऐसा लगता है कि हाय काश वो दिन वापस आ जाए। बस हो चुका है 1:10 और संडे का दिन है 30th of August। और आज भाई कितनी ठंड है कि क्या कहें, बाहर तो जैसे तूफान की हवा है। और अगर आप कहीं जा रहे हो तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि रास्ते पर बहुत गाड़ियाँ तो नहीं हैं, फिर भी हवा तो ज़ोरदार है। साथ में रह रहकर बारिशें भी हो रही हैं, और जहाँ भी हो आप गर्म कपड़े पहनकर निकलेगा ज़रूर। और ऐसे में हमारे जो गाने हैं ना, आपको गर्मा गर्म जो है वो हम वाइब्स भेज रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। सो बस एंजॉय कीजिए। और हम आपको बता देते हैं कि हमारे फ़ोन में कुछ खराबी आ रही है, कुछ फ़ोन हम ले पा रहे हैं, कुछ फ़ोन हमें नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कुछ मैसेजेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ देर में। तो बस संडे का दिन है और इस समय थोड़ी संडे नॉस्टैल्जिया का हो जाए, बस संडे का जो मेमोरीज हैं हम रिफ्रेश करते हैं। रविवार का दिन हो और साथ में हो रेडियो तो मेमोरीज अपने आप जाग जाती हैं। किसी को याद आता है कॉलेज का ज़माना, किसी को पहला प्यार, किसी को दोस्तों के साथ बिताई शाम। और जब संडे को बहुत से लोग जो हैं इस दिन का इंतज़ार करते थे कि कब संडे आए और सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेलें, और सभी जो मम्मीज थी ना वो एक साथ बैठकर गपशप करती थी, चाय बनाती थी एक साथ। और वैसे चाय की बात हुई तो चाय के समय में कुछ समय बाकी है मेरे दोस्त, अगर आप लंच ले रहे हैं तो बस बन अपेची शुभहार। और हम याद करते हैं वो पुराना ट्रांजिस्टर या कैसेट प्लेयर जिस पर ये गाने आप सुनते थे पहले। तो बस आज का सुहाना सफ़र उन्हीं यादों को फिर से जीने की एक छोटी सी कोशिश है। और साथ में आज है टीना मुनीम के गीतों के साथ ये सफ़र और भी सुहाना हो जाता है। और टीना मुनीम पर पिक्चराइज गाने तो हम चलाएंगे, मगर अभी के लिए बस हो जाए एक गाना। वैसे हमेशा जब आती हैं पुपू श्यामा राव गुरुनंदन जी, हमेशा कुछ ना कुछ अलग लेकर आती हैं, और उनको उनका ज़माना ये था, गुज़रा ज़माना, वे ऐसे गाने पसंद करती हैं। तो बस आपको खुश करने वाले हैं इस गाने के साथ। मुगल आज़म फिल्म का गाना है लता जी की आवाज़ में। तो बस ये गाना आप एंजॉय कीजिए श्यामा जी, और साथ में उनके आपके जितने परिवार हैं, रघुनंदन परिवार, आपके भाई साहब हैं जयप्रकाश, आपकी भाभी हैं नम्रता, साथ में केशव युदेश, और आपकी जो सहेलियां हैं वीना रामफल, विश्वानी दुखी और नंदिनी ओकलू, आप सबों के लिए हो जाए सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान। ओल्ड इज गोल्ड।

आखिर क्यों? ये फिल्म है और इस फिल्म के गाने जो हैं यहाँ पर हो रहा है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, और ये जाएगा चंदनी जी आपके लिए, और जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं आपके नाम करेंगे, और साथ में ये गाना हम करते हैं हमेशा की तरह

किशोरदा की आवाज में यग लगाना नजराना भेजा है किसी ने प्यार का नजराना हम भेज रहे हैं आप सबों के नाम आपका बर्थडे है आप किसी चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं या वैसे ऐसी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये गाना आपके लिए और स्पेशली बाबू अनतवा जी की ओर से कठोबोन के हैं और ये गाना वे मांग रहे हैं अपने जो नीफ्यू हैं आश्विन आश्विन का जो बेबी है फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज सो हैप्पी बर्थडे बेबी और सभी अनतवा परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं बेस्ट विशेज हैं एंड वी होप कि जो बच्चा है वो बड़ा होकर अच्छा बच्चा बनेगा अपने माँ बाप के साथ हमेशा खुश रहेगा और ढेर सारी दुआ ढेर सारा प्यार भेजते हैं और वैसे बाबू अनतवा जी कह रहे हैं कि उनको ये गाने पसंद आ रहे हैं और साथ में तीना मुनीम को इंट्रोड्यूस किया था देवानंद साहब ने ऑब्वियसली आपको पता है तो बस ये गाना बाबू जी आपके लिए और पूरे परिवार के लिए और शाम को आप जाने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए तो एंजॉय

0: RM3 Radio.
1: ये संगीत आवाजों की रफी साहब की पिक्चर एज और ऋषि कपूर साहब साथ में तीना मुलिम फिल्म कर्ज का गाना है और इस गीत की मांग ये है वैसे वो प्लेलिस्ट में था ही और साथ में हमें अच्छा लगा कि मनोज भाई मनोज जी लेस्पिरेंस रबिशे से नजीमा जी उनकी वाइफ हैं उनकी पसंद पर ये गाना हम चलाने वाले हैं और उनको ये गाना बेहद पसंद है रोमांटिक मूड में हम आ गए हैं इस गाने के साथ सो सभी सोहन परिवार के लिए और साथ में जो गया सिंह आश्रम के रेजिडेंट्स हैं बीमार लोग हैं अस्वस्थ लोग हैं जो दुखी लोग हैं उन सब के लिए दुआ मांग रहे हैं और ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. ये वादा रहा मूवी का गाना है और इसमें नजर आए थे ऋषि कपूर साहब साथ में थी पूनम ढिल्लन और ऑफ कोर्स टीना मुनिम और इसमें उनका किरदार जबरदस्त रहा और सभी को उनकी जो करैक्टर थी उसमें उनको बहुत पसंद किया साथ में जो गाने थे डांस थे इमोशंस थे इसको कौन भूल सकता है एलिगेंस इनोसेंस और इटर्नल चार्म टीना मुनिम उनका अंदाज बहुत नेचुरल था उनकी मुस्कान में वार्म्थ थी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ही सॉफ्टनेस और इस अगले गाने में नाम जोड़ना चाहेंगे हरीश बाबू आपका नाम बिबासे से और ये गाना खास तौर पर आपके दोस्त के लिए और ऑल्सो मोका की सुदेवी जी ये गाना आपके लिए सुदेवी जी घूमने गई थी यूरोप वापस आ गई और ऐसे ही कमबैक कर दिया उन्होंने रेडियो पर भी हमारा साथ देती रहती हैं थैंक यू सो मच

तो दोस्तों अगर आपको इस गोल्डन एरा के फैन हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि अब आने वाला है वो गीत जो आपको ले जाएगा उन सुनहरे दिनों में और जीने का कला भी इस गाने में है जीवन के दिन छोटे से ही और आज हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम पर और ये एक्ट्रेस इस फिल्म में नज़र आई थी साथ में ऋषि कपूर साहब थे प्राण साहब थे और बाकी जो अन्य कलाकार थे और ये गाना जो है स्पेशली डेडिकेट करने वाले हैं फॉर उर्वशी जी ऑफ सुयाक टेक केयर मिसिंग यू एंड थिंकिंग ऑफ यू उर्वशी जी और पूरे परिवार के लिए साथ में शुमन ग्रनिये से कनेक्टेड हैं गुरन सिंह फैमिली सो स्पेशली हम नाम जोड़ देंगे हेलो तो शर्मिला प्रवीण साधना और प्रीतम और साथ में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं ये गाना आप सबों के लिए ऑल्सो ये गाना हम पेश करने वाले हैं फॉर फिकों फ्ला की अनिता जी ये जो गाना हमने चलाया अभी ये गाना आपको पसंद था सो ये गाना आपके लिए भी और इस अगले गाने में नाम जोड़ते हैं तो आप कह रही हैं कि आपकी भतीजी अंजू यूके से आई थी हॉलीडे के लिए वापस चली गई उसके लिए प्लीज़ ये गाना हम पेश करने वाले हैं सो बस हैप्पी संडे टू यू टू और सभी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए भी थैंक यू सो मच अनिता जी ऑफ फिकों फ्लाक तो गुनगुनाते हैं

विमला सिबुरन जी, ये आपके लिए और साथ में आपके पूरे परिवार और दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, और ये गाना लेकर जाएगा हमें 2 बजे किस समाचार की ओर।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सोलिचिड में मारियामेनको विल के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज शिलान्यास विधि संपन्न की गई। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं। तोबिश के समंदर के बढ़ते जल स्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करने से पहले कहीं ज़्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक ज़मीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समुद्र तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, समुद्री सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 आम नागरिकों की मौत हुई है। 400 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

10 मिनट हुए हैं, डुबशकर 10 मिनट हुए हैं, संडे का दिन है 30 अगस्त और अभी से लेकर 3 बजे तक हम आपका साथ देने आए हैं 90s वाले गीतों को लेकर। सो बस हम आशा करते हैं कि आपका जो संडे है वो अच्छी तरह से बीत रहा होगा और ऐसे प्यारे प्यारे गाने, पहले तो तीना मुनीम पर पिक्चर आज कुछ गाने और आपके कुछ नए कुछ पुराने अभी के लिए 90s वाले। और आप सुन रहे हैं MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ देविना। संगीत, यादों और मुस्कुराहटों से भरा एक और सुहाना सफर लेकर आए हैं और आज का सफर है थोड़ा खास क्योंकि आज हमारे साथ हैं वो सितारा जिन्होंने 90s के दौर में कभी रोमांस किया, कभी एक्शन किया, कभी कॉमेडी से हंसाया और कभी अपने अंदाज से दिल जीत लिया। जहाँ दोस्तों बात हो रही है हमारे खिलाड़ी कुमार की, अक्षय कुमार की। 90s में जब पर्दे पर अक्षय कुमार आते थे तो जो नौजवान थे ना वो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी उनमें। एक्शन हो तो खिलाड़ी, रोमांस हो तो दिलवाला, कॉमेडी हो तो मस्त मौला और स्टाइल हो तो अक्षय कुमार। तो चलिए आज दोपहर बनाते हैं थोड़ी और हसीन, थोड़ी और नॉस्टैल्जिक क्योंकि शुरू हो चुका है हमारा अक्षय कुमार स्पेशल 90s मैजिक। और 90s का संगीत और अक्षय कुमार की स्क्रीन प्रेजेंस कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा था कि गाना शुरू होते ही यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो हम बात करें मैं खिलाड़ी तो नारी, बेवफा, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, भूल भुलैया, साथ में उनके कितने एक्शन मूवी थी, उनके कितने, और आजकल वे इतने वो उनका स्टाइल ही बदल चुका है कि क्या कहें। बस 90s के कुछ गानों की हम की ओर बढ़ते हैं और ये गाना चुरा के दिल मेरा फ्रॉम द मूवी मैं खिलाड़ी तू अनारी। टू एंजॉय दिस नॉस्टैल्जिक मोमेंट ऑफ द 90s सुहाना सफर प्रोग्राम में।

था। वैसे अक्षय कुमार साहब सिर्फ एक्शन के ही नहीं उस्ताद नहीं थे, बल्कि 90s में अक्षय कुमार ने रोमांस के रंग भी खूब दिखाए। उनकी फिल्मों के रोमांटिक सॉन्ग्स आज भी सुनते ही हमें वही पुराना सिनेमा, वही कैसेट प्लेयर, वही कॉलेज के दिन और वही पहली पहली मोहब्बत याद दिला देती हैं। और यही तो खासियत है 90s के गीतों की। गीत पुराने हैं मगर एहसास आज भी बिल्कुल नया है। और अगर हम बात करें तो जिक्र कर रहे हैं अक्षय कुमार की, और उनकी सभी फिल्मों को बहुत लोगों ने पसंद किया, और उनके एक्शन मूवी, उनके रोमांटिक मूवी, और कैसे भूले तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त मोहरा फिल्म के लिए उनको बहुत सराहा गया। उनके डांस भी, एक्शंस भी साथ में दिखी थी रवीना टंडन, और साथ में ऑल्सो वी हैड सुनील शेट्टी साहब। सो आप सुन रहे हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं अक्षय कुमार साहब पर पिक्चराइज्ड उनके गाने हैं, और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग उन गानों को पसंद कर रहे हैं। सो एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल वन, द नेक्स्ट वन जस्ट फॉलो यू।

जी हाँ, 2:55 हुए हैं और आज का इस सफ़र ये ख़त्म होने वाला है। और जैसे वैसे कहते हैं ना, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत और अच्छे कलाकार कभी पुराने नहीं होते। सो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का हमारा ये जो घंटा है, 3 घंटों का प्रोग्राम है, अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। आज हमने याद किया 90s के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार को, उनकी एक्शन फिल्मों को, उनकी रोमांटिक फिल्मों को, उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस को, और सबसे बढ़कर उन गीतों को जो आज भी हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। अक्षय कुमार की 90s जर्नी हमें एक खूबसूरत बात सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि लगातार खुद को बदलते रहने का नाम है। और शायद इसी वजह से आज भी उनका नाम बॉलीवुड के सबसे मेहनती और वर्सेटाइल सितारों में लिया जाता है। मैं हूँ देविना और आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मनोरंजन, और जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, यादें बनकर दिल में उतरती हैं। अब समय हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, अगर साथ हो सुरीले गीतों का, आपके साथ का, तो हर सफ़र बन जाता है एक सुहाना सफ़र। सो बस मिलते हैं अगले सप्ताह, और हम आशा करते हैं कि आने वाला जो सप्ताह है आपके लिए मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक, सुनते रहे।

है आर एम श्री रेडियो मनोरंजन, आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल। सो बस हमारे बाद आने वाले हैं अजय प्रताप सिंह, उनका साथ जरूर दीजिएगा। सो चलते चलते ये गाना आप सबों के लिए, स्पेशली अक्षय के फैंस के लिए, अक्षय कुमार के फैंस के लिए। एक अक्षय, हमारे जो अक्षय हैं, अक्षय कुमार के फैंस हैं, तो बस सभी फैंस के लिए ये हो जाए भूल भुलैया।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। सुरिचित में मारियामेन कोविल के लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक नई इमारत के निर्माण के लिए पुरानी संरचना को जल्द ही गिरा दिया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत करते हुए आज सुबह शिलान्यास विधि संपन्न की गई। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होंगे। ये समारोह प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में संपन्न किया गया। इस मौके पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया, जिसे वे हमारे समाज के आधारों में से एक मानते हैं।

0: उन्हें ये भी रेखांकित किया कि धर्म द्वारा प्रसारित मूल्य समाज का मार्गदर्शन करने के लिए एक वास्तविक दिशा निर्देश का काम करते हैं। तो विश्व में समुद्र के बढ़ते स्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपाय लागू करने से करने पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव हो सकता है। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इको सिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है, 400 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं। ये हमला यूक्रेनियन सेना के एक हथियार भंडार को निशाना बनाकर किया गया था। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की 39 ईयर्स ओल्ड श्रीमती शालिनी धनपत भवानी दीन, पैदाशी नाम धनपत जो शालिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी मंगलवार 1 सितंबर को दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूसडे 1 सितंबर। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: ऐसा भी होता है ऑन RM3।
2: कुछ लोग कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्या ये बात सच है या कुछ और बात है? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आजकल जो दुनिया में हो रहा है वो सही हो रहा है? क्यों ये दुनिया इतनी जालिम हो गई है, क्यों लोग इतने बेदर्द हो गए हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन योर वीकली शो, आपका साप्ताहिक कार्यक्रम है ये, ऐसा भी होता है। और जय प्रताप सिंह के साथ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, आपका हम स्वागत करते हैं। वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम है। सो हो जाइए तैयार, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट रेडी टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

ये प्राकृतिक प्रकोप पता नहीं कब कम होंगे, एक से एक भयंकर आजकल प्राकृतिक प्रकोप देशों पर प्रहार कर रहा है। नेपाल में 24 अगस्त को, जी हाँ, चीन तिब्बत सीमा के हिमालयी क्षेत्र में एक बड़े ग्लेशियर के टूटने से हिम चट्टान के अवलांश ने भारी मात्रा में बर्फ चट्टान और मलबा नदी में गिरा दिया। इससे जो है भोटे कोशी नदी और आसपास के इलाकों में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पानी के साथ भारी मलबा बहा जिसने गांवों, पुलों, सड़कों, बिजली परियोजनाओं और सीमा क्षेत्र की इमारतों को तबाह कर दिया और कहा जाता है कि 730 लोगों की मौत हो गई। अब तक यह संख्या बढ़ सकती है, लगभग 2000 लोग अभी तक लापता है, मलबे तले दबे हुए हैं। तिब्बत में 16 लोगों की मौत और 500 लोग लापता बताए जाते हैं। दोनों देशों को मिलाकर 800 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 3000 से भी ज़्यादा लोग लापता है। लापता लोगों की संख्या बड़ी होने के कारण मृतकों की अंतिम संख्या और बढ़ सकती है। ऐसा क्यों हुआ? विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में बढ़ते तापमान और ग्लेशियरों में बदलाव के कारण बर्फ और चट्टानों

के अस्थिर होने का खतरा बढ़ रहा है। इस घटना में ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे आया, जिससे नदी में अचानक बहुत बड़ा मलबा और पानी पहुंचा और विनाशकारी फ्लैश फ्लड हो गया। नेपाल में हजारों पुलिस, सेना, बचाव कर्मी राहत एवं खोज अभियान में लगे हुए हैं। भारत से सेना भी आए हुए है मदद पहुंचाने के लिए। कई जगहों में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग मलबे में फंसे हुए हैं और खराब मौसम तथा क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो रहा है। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि नेपाल में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे पर्यटक उस समय जो है जब यह अवलांश हुआ तो वहाँ पर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि अचानक चट्टान, मिट्टी और पानी का ये जो बाढ़ है अचानक वहाँ आ गया और कई लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए। और जब हम यह सब सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारी रूह कांप उठती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है और प्राकृतिक प्रकोप के आगे जो है हम कुछ नहीं कर सकते। और जब हम ग्लेशियर के मेल्ट होने की बात करें तो हम भी सेफ नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि हम इंडियन ओशन में हैं और जो ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल में अगर यूँ ही पिघलते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि पानी का जो लेवल है वो तो बढ़ता जा रहा है। और हम जैसे छोटे आइलैंड हैं जिसे हम इतना कहते हैं, जैसे मॉरिशस, रोडिग्रेनियंस है, शायद एक दिन पानी में हम समा जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है क्योंकि ग्लेशियर जो है मेल्ट होते जा रहे और एक दिन ऐसा भी हो सकता है।

बच्चे जिद्दी होते ये तो हम जानते हैं, पर नवयुवक इतने जिद्दी हो सकते हैं? उनके जिद के कारण माँ बाप की जान जा सकती है। ऐसा ही हाल में एक हादसा पेश आया है महाराष्ट्र में। कुछ सप्ताह पहले एक 17 वर्षीय नवयुवक ने अपने माँ बाप से एक आईफोन मांगा था। माँ बाप ने कहा था कि 2 महीने बाद वो उन्हें आईफोन देंगे, पर बच्चा इतना ढीठ था, इतना जिद्दी था कि उसने अपने माँ बाप को धमकाया और वह पहाड़ पर चढ़ गया और माँ बाप भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। लड़के ने कहा, पिताजी आप मुझे आईफोन दोगे या नहीं? पिताजी ने कहा, हाँ मैं दूंगा, थोड़ा सा समय तो दो। पर वो जिद्दी लड़का पीछे जो है वो मुड़कर नहीं देखा और उसने छलांग मारा ऊपर से और उसकी मृत्यु हो गई। जब पिताजी बच्चे को बचाने गए तो वो भी फिसल के गिर पड़े और उनकी भी मृत्यु हो गई और माँ भी पीछे दौड़ी तो माँ की भी मौत हो गई। एक पूरा परिवार समाप्त हो गया एक आईफोन के कारण। छी, 17 वर्षीय नवयुवक कॉलेज जाता था, आज क्या कर दिया उसने? क्या यही शिक्षा ग्रहण कर रहा था स्कूल में? क्या उसे यही सिखाया जा रहा था एक आईफोन के लिए? हाउ स्टूपिड, कितना स्टूपिड है वो लड़का। आईफोन के लिए उसने इतना जिद्द किया कि आज आईफोन के कारण उसकी जान छिड़ी गई। अब तो जान छिड़ गई, अब आईफोन का क्या होगा? तो सोचने वाली बात है। कभी कभी बच्चे इतना जिद करते, इसे कहते हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो उसे तुरंत नहीं देना चाहिए। जब हम कुछ बच्चों को देते हैं तो बच्चों को सिखाना चाहिए कैसे मेहनत करके हमें पैसा मिलता है, तब जाकर हम खरीदते हैं। पर हमने देखा है कुछ माँ बाप बच्चों को सब कुछ देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कल को अगर आपके बच्चे आपसे चांद तारे मांगेंगे तो क्या आप चांद तारे तोड़ कर देंगे? नहीं ना। हाँ, वैसे ही तो बच्चों को देना चाहिए, लाड प्यार करना चाहिए, पर इतना भी लाड प्यार ना करे कि बच्चे इतना थेथर, इतना जिद्दी हो जाए। और आज इसी जिद के कारण एक पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए मिल गया। यह घटना घटी है महाराष्ट्र में। सो दोस्तों, जिद के कारण लोगों की जान भी जा सकती है, ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है।

94.6, 98.2 FM पर ये है MBC का म्यूजिकल चैनल और रेडियो मनोरंजन। आज प्रताप सिंह के साथ इन योर वीकली शो, ऐसा भी होता है शाम के 3:25। जी हाँ दोस्तों, जब शैतान सर पे सवार हो जाता है तो इंसान इंसान नहीं शैतान बन जाता है। हाल ही में पाकिस्तान में एक 17 वर्षीय नवयुवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक 18 महीने की बच्ची बेबी का बलात्कार करके उसे मार डाला। बात यूँ हुई कि एक महिला ने अपने बच्ची को अपने भांजे के यहाँ छोड़कर वो काम पे गई और उसने बोला कि बच्चे की देखभाल करने के लिए शाम को वो लौटकर बच्चे को लेकर वो घर आएगी। और वह लड़का था उसकी बहन का बेटा। और जब वह महिला बच्चे को छोड़कर काम पे गई, जब शाम को वो लौट कर आती है तो बच्चा को बेड पर रखा गया था और बच्चा खून में लथपथ था। जब माँ ने डायपर खोला तो देखा कि

उन जालिम लड़कों ने उस बेबी का बलात्कार करके उसे मार डाला था ठीक और आज वो दोनों लड़के जेल के सलाखों के पीछे है सो प्रश्न ये उठता है क्या हम अपने बच्चे को किसी के भरोसे पर छोड़कर काम पे जा सकते हैं सोचने वाली बात है देखिए इस महिला ने अपने भांजे के हाथ में बेबी को छोड़कर भरोसे पर छोड़कर गई कि बच्चा उसका देखभाल करेगा और जब शाम को वो लौटेगी तो बच्चे को लेकर आएगी पर जब वो लौटी तो बहुत देर हो चुकी थी बच्चे की जान जा चुकी थी जैसे इमेजिन स्मॉल बेबी बीइंग रेप्ड बाय टू यंगस्टर्स ऑफ 17 इयर्स ओल्ड कितनी शर्म की बात है क्या ऐसा लोग कर सकते हैं वो भी वो जो बच्ची थी उसकी बहन के समान थी क्या कोई अपनी बहन का बलात्कार कर सकता है आखिर लड़के ने ऐसा क्यों किया क्या इतना भी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते अपने डिजायर्स को कि इसे काम कर देते हैं भगवान तो उन्हें माफ़ नहीं करेगा कानून भी माफ़ नहीं किया आज दोनों लड़के जो है 17 साल के हैं और वो सलाखों के पीछे हैं दिस इंसिडेंट ओकर्ड इन पाकिस्तान अ फ्यू डेज अर्लियर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए सजाएं मौत टू बी हैंग टिल डेफ ये भी शायद काफ़ी नहीं है इनको इतना दर्दनाक मौत देना चाहिए ताकि मौत भी डर जाए कि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए हमने कहा था आपसे दोस्तों कि इस दुनिया में आजकल बहुत बहुत बुरे लोग हैं अच्छे लोग भी हैं पर अच्छे लोग कम हैं पर बुरे लोग ज़्यादा हैं क्योंकि उनमें शैतान हैवान जो है उनके सर पर चढ़ गया है यू ए बी केयरफुल लोगों से बच के रहिएगा दोस्तों

वेलकम टू माय शो. जी हाँ, ऐसे भी होता है. लाइव ऑन रेडियो मनोरंजन www.mcradio.tv क्लिक करें, फिर क्लिक करें लिसन रेडियो मनोरंजन. और आज टिकटॉक पर प्रोग्राम नहीं है, कोई बात नहीं, लाइव रेडियो पर चल रहा है और ऑनलाइन इंटरनेट पर भी. दुनिया से भी आप, दुनिया भर के देशों से आप हमें सुन सकते हैं इन क्लियर क्रिस्टल स्टेरियो साउंड. यस दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं और उन इमारतों में से एक इमारत है जिसका नाम है गोबेकली टेपे. तुर्की इससे दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञात धार्मिक अनुष्ठानिक परिसरों में गिना जाता है. यह लगभग 9600 ईसा पूर्व का है, यानी आज से लगभग 11600 साल पुराना. यहाँ विशाल पत्थर के स्तंभ और नक्काशी मिली हैं. इसका नाम है गोबेकली टेपे. फिर है गगन टीजा टेम्पल्स. माल्टा में ये विशाल पत्थर का मंदिर लगभग 3600 या 3200 ईसा पूर्व के है. इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी स्वतंत्र रूप से भरी पत्थर की रचनाओं में माना जाता है. का नाम है गगन टीका टेम्पल्स. फिर भारत में है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल. बिहार का मुंडेश्वरी मंदिर भारत के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है और इसका इतिहास लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी CE तक जाता है. हालांकि स्थल की पुरातनता इससे भी अधिक हो सकती है. मुंडेश्वरी देवी टेम्पल और बेशक ये सब बहुत पुरानी इमारतें हैं जो बहुत साल पहले बनाए गए हैं और आज भी टिकी हुई है. सो अगर आपको मौका मिले एक दिन, अगर आपके यहाँ बहुत पैसा हो तो आप इन जगहों का भ्रमण ज़रूर कीजिएगा. जहाँ मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, फिर गोबेकली टेपे और गगन टीका टेम्पल्स, ये सब जगह आज भी मौजूद है. सो अगर एक दिन आपको मौका मिले तो इन सब जगहों का भ्रमण ज़रूर कीजिएगा.

इस दुनिया में हर प्रकार की नौकरी है, सरकारी नौकरी, नॉन गवर्नमेंटल जॉब, पर्सनल जॉब, बिजनेस। नौकरी करते हैं पैसे कमाने के लिए। पर क्या आपने कभी सुना है कि कभी कैसी नौकरी जिससे एक व्यक्ति की जान जा सकती है? जी हाँ, कैसी

उन्होंने कई ऐसी घटनाओं की जांच की जिन्हें लोग पैरानॉर्मल कहते हैं और वो आत्माओं से बात करते थे। 7 जुलाई 2016 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। उनकी उम्र उस समय लगभग 32 वर्ष की थी। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें उनके घर के बाथरूम में बेहोश पाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस जांच में आत्महत्या की संभावना पर बात भी हुई थी। उनके परिवार से जुड़ी कुछ रिपोर्टों में पैरानॉर्मल घटनाओं की बातें सामने आई, लेकिन उनकी मृत्यु को किसी भूत या पैरानॉर्मल फोर्स ने किया इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या सच है पैरानॉर्मल रिसर्च की वजह से उनकी मौत हो सकती है? हो सकता है, और इसका जवाब नहीं कहा जा सकता। उनकी मौत को पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ने वाली कहीं कहानियां इंटरनेट और मीडिया पर काफ़ी फैली, लेकिन वैज्ञानिक या आधिकारिक जांच से ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि उसकी अलौकिक शक्ति ने उनकी हत्या की। पर कहा जाता है कि गौतम तिवारी ये व्यक्ति जो थे वो रात को कब्रिस्तान में जाते थे, शमशान घाट में जाते थे, और उसके पास एक डिवाइस था। वो उस डिवाइस से आत्माओं से बात करते थे और कभी कभी पूछते थे आत्माओं से कि क्या उनका नॉर्मल डेथ हुआ है या किसी ने उनको जान से मारा है। और वो आत्माओं से इतने जुड़े थे कि आत्माओं का जो वॉइस था वो रिकॉर्ड होता था। घर में आकर रात कर देर तक रिसर्च करता था और लोग कहते थे कि उनके पास कैसी शक्ति थी कि वो आत्माओं से बात कर सके। क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जो व्यक्ति मर जाते हैं क्या हम उनके आत्माओं से बात कर सकते हैं? अगर आज गौतम तिवारी जिंदा होते तो शायद वो हमें उनसे मिला पाते, कौन जान सकता है।

मौत के बाद क्या होता है ये सभी लोग जानना चाहते हैं पर आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के बाद आत्मा जो है शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो कुछ लोग कहते हैं मौत के बाद सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। पांच तत्वों से बना है शरीर और अंत में पांच तत्वों में मिल जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब मृत्यु होती है तो लोग एक नींद में होते हैं और वो नींद से कभी नहीं जागते। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग सो रहे हैं पर अक्सर में ये मौत की नींद होती है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब मौत होती है तो यमदूत आते हैं प्राण को पास में लेकर यमपुरी जाते हैं, वहाँ पर न्याय होता है, फिर भगवान देखते हैं कि हमने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार हमें स्वर्ग या नरक मिलता है। सो बहुत सारे ऐसे जो है स्कूल है जो तरह तरह की बात करते हैं मौत के बारे में। और मौत अपने आप में एक मिस्ट्री है। अब देखिए कई प्रकार की मौत है, एक तो नॉर्मल डेथ जब इंसान बीमार होता है तो मर जाता है, कभी आत्महत्या किलिंग वन सेल्फ, या मौत ऐसे भी आती है एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी की मौत हो जाती है, या कोई कहीं जा रहा है और अचानक वो हंसने लगता है और एक ऐसी खबर मिलती है कि खुशी के मारे उसकी जान निकल जाती है, या कभी कभी डर के मारे किसी की भी जान जा सकती है। सो इस मृत्यु के बारे में तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है, बहुत सारी रिसर्च किए जा रहे, पर आज तक नहीं पता चला कि मौत क्या है। डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिकल रूप में देखा जाए तो इंसान का दिल जब धड़कना बंद कर देता है सो वी सर्टिफाई द पर्सन मेडिकली डेड। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान मर जाता है तो तुरंत जो है उसका शरीर में एक्टिविटी समाप्त नहीं होता है, उसका एक्टिविटी जारी रहता है कुछ समय तक और बाद में प्राण निकलता है। और यह जो सोल है, यह जो प्राण है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है हमारे वेद पुराणों में, उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा अमर है, अजर है, और आत्मा जो है शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है कर्मों के अनुसार। Well, all these things are being said about death, पर क्या सच है ये बताना मुश्किल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरा क्या विचार है मौत के बारे में, so I think when a person dies, it's over and over for all. सब समाप्त हो जाता है उसके लिए। हम रोते हैं, विलाप करते हैं, पर क्या वो लौट कर आएगा? No guarantee. जब तक इंसान ज़िंदा है हम उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ घूमने फिरते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर जब इंसान मर जाता है देन ही इज़ गॉन फॉरएवर। आप सोचेंगे कि आत्मा आएगी या जन्म लेगा या पुनर्जन्म, आई डोंट थिंक अबाउट इट। सम पीपल डू बिलीव इन दैट, आई डू रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, पर आज तक नहीं जान पाया कि मृत्यु के बाद आखिर क्या होगा। अद्भुत संसारी खबरों का प्रोग्राम हिमेश रेशम या केसिक के साथ समाप्त होता है, ऐसा भी होता है, कम्स टू एन एंड। चार बजे होगा फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी गजलें। शाम के 3 बजे से अभी तक हमारा साथ देंगे, शुक्रिया करम मेहरबानी। आई कैच यू ऑन ट्यूसडे नाइट। मंगलवार की रात को हमारी आपकी मुलाकात होगी आज से रात के 12 बजे तक ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है। Till then, it's goodbye from me, RJ Pratap Singh Sitaru ki ore se. Aap sabhi ko pyar bhara namaskar, aadab, love you all, God bless. Have a lovely Sunday, bon weekend. Bye-bye, take care. Namaste.

0: सुनते समाचार अदिति जी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक झूठी तस्वीर को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक की गवर्नर प्रिसिला मथुरा ताकू को जनता से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से सावधानी बरतने और इस प्रकार की किसी भी धोखाधड़ी की स्कीम में निवेश न करने की मांग करता है। वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का बेहतर सामना करना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है। तोबिश में समंदर के बढ़ते जलस्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए

0: जरूरी उपाय लागू करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा हो सकता है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में उत्तरी भयानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 787 तक पहुंच गई है और अभी भी 2500 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है और लोगों को कीचड़ से निकाला जा रहा है। भारत और चीन सहित कई देशों की तरफ से मदद प्राप्त हो रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 4:13 हो चुके हैं। नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं RM3 और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों, रविवार की ये शाम जरा थोड़ा सा रुकिए, एक लम्हा बस। आज किसी ने आपसे पूछा, ठीक हो क्या? किसी ने चाय बना कर दी, किसी ने बस एक नज़र से देखा और आपका दिल भर आया। यही तो वो प्यार है, यही तो वो मोहब्बत है जो बड़ी बड़ी बातों से नहीं, छोटे छोटे लम्हों से मिलती है। आज की महफिल उन्हीं लम्हों के नाम, उस परवाह के नाम, उस एहसास के नाम जो दिल को नरम रखता है। तो संभाल लीजिए अपना दिल, अभी शुरू होता है फिल्मी गज़लें। और यहाँ पर ये जो जितनी भी गज़लें आपको मिलेंगी, जितनी भी मोहब्बत आपको मिलेगी, आपने बस उसे संजो के रखना है, अपने साथ रखना है और किसी ना किसी को बांट के तय रहना है।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: दोस्तों 4:21 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ, और इस समय मैं आपके साथ दे रही हूँ पूनम। दोस्तों हमारे बीच में आजकल बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनकी बात ही क्या, उन्हीं में से एक है तहजीब हाफी। आज के दौर के सबसे मकबूल नौजवान शायर जिनकी शायरी नई पीढ़ी के लिए एक ऐसी बात है जो कि दिल से बात करती है, पर उनकी पुरानी गज़ल उनकी रूहों में आज भी बसती है। लिखते हैं, तुम्हें देखकर लगता है, तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी ने कुछ रख छोड़ा था मेरे लिए। तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी ने कुछ रख छोड़ा था मेरे लिए, इतने सालों की तलाश के बाद तुम मिले और सब मिल गया। दोस्तों कभी कभी जिंदगी किसी को देती है और लगता है हाँ यही तो चाहिए था, जिस चीज़ की तलाश मुझे दर बदर थी और ये चीज़ मेरे सामने आ गई अपने आप। शायद आपने उसके लिए बहुत शिद्दत से मेहनत की होगी, पर कभी कभी बिना मेहनत के वो इंसान आपके सामने आ खड़ा होता है और आपको एहसास होता है बस यही तो चाहिए था।
0: RM3 Radio.

4:29 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ और साथ तेरी है पूनम। एक बहुत बड़े शायर हुए, उनका नाम रहा गुलजार देहलवी। दोस्तों गुलजार देहलवी दिल्ली की गलियों से उठी एक ऐसी आवाज़ जिसने इश्क भी था फलसफा भी था।

0: बहुत कुछ लिखा उन्होंने, पर जब लिखा तो कुछ ऐसा लिखा जो कहते हैं मौसमों को बदल दे। लिखते हैं, तुम्हारे होने से रात भी रोशन है, तुम्हारे होने से रात भी रोशन है, तुम्हारे होने से खामोशी भी बोलती है, ये जो तुम्हारी मोहब्बत है मेरे साथ, यही मेरी पूरी शायद कहानी है। दोस्तों, कोई ऐसा हो जिसके होने से खामोशी भी खूबसूरत लगे, तो समझ लीजिए यही मुकम्मल मोहब्बत है। आज उस खामोशी को ही महसूस कीजिए और साथ रहिए फिल्मों गज़लों के साथ। और फिल्मी गज़लों में मैं आपके साथ दे रही हूँ पूनम।
1: RM3 Radio.

4:38 हुए हैं दोस्तों। आज बात करते हैं जावेद अख्तर साहब की। दोस्तों, जावेद अख्तर जिनकी कलम ने हिंदी सिनेमा को एक नया मोड़ दिया। जब उन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया तब उन्होंने बहुत कुछ सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी के बारे में, बस इतना जानते थे कि उनको लिखना पसंद है। उन्होंने लिखा, तुमसे मिलना बस इत्तफाक था, तुमसे मिलना बस इत्तफाक था, पर तुमसे बिछड़ना मुमकिन नहीं। तुमसे मिलना बस इत्तफाक था पर तुमसे बिछड़ना मुमकिन नहीं। जिंदगी तुम्हारे बिना कोई धड़कन बिना दिल के रह सकती है? दोस्तों, जावेद साहब ने कितनी सच्ची बात की है। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसके बिना दिल ना धड़के उसे जाने मत दीजिए, वही तो सच्ची मोहब्बत होती है। RM3 Radio.

0: 4:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपनी ही प्रोग्राम फिल्मी गज़लों के साथ। और आज बात कर रहे हैं हम बहुत सारे ऐसे शायरों की, शायरा की, जिनके पास एक अलग लिखने के लिए बहुत कुछ, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे अल्फाज थे। उनमें से एक बहुत ही प्यारी शायरा है, उनका नाम है नगमा सहर। आज के दौर की खूबसूरत और संवेदनशील आवाज़ लिखती है, तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबह है, तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबह है, तुम्हारी आवाज़ मेरी शाम है, ये मोहब्बत नहीं तो क्या है, जो तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मैं। दोस्तों, सुबह हो या शाम, जब किसी एक इंसान से जुड़ाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, उसी को तो मुकम्मल मोहब्बत कहते हैं। आज उस इंसान को आप खुद बताइए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हो सकता है आप उन्हें मैसेज करें, हो सकता है सामने से कहें, और हो सकता है कि आप अपनी बात को कभी कह ही ना पाए हों और वो इंसान आपके सामने है, तो आप कह दीजिए उन्हें कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio.
1: दोस्तों, मोहब्बत कोई बड़ी चीज नहीं मांगती, बस एक नजर, बस एक सवाल, बस एक मुस्कान। दोस्तों, आज ये शाम जो थी, इसको हमने बहुत ही प्यार से संजोया। जो भी आपके आसपास है उनको प्यार दीजिए, प्यार बांटिए, उन सबको शुक्रिया कहिए अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। मेरे से पहले थे आपके साथ प्रताप जी और मेरे बाद आएंगी शीतल जी। अगले रविवार को फिर से मुलाकात होगी। मैं थी आपके साथ पूनम, फिल्मी गज़लों में RM3 में। आप सबको मैं अलविदा कहती हूँ, पर फिर मिलेंगे अगले संडे इसी समय इसी टाइम पर और साथ में मेरी तरफ से। बाय बाय।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
5: जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते, और कभी कभी उन लम्हों को हम गीत और संगीत से जोड़ लेते हैं। यादें प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही गाने, कुछ ऐसे ही लम्हों को एक बार फिर जी लेते हैं, और आज यादें प्रोग्राम के जरिए कुछ खास ले आए हैं, यानी कि कुछ ऐसे गाने जो कि इतिहास रच दिए। एक बॉलीवुड क्लासिक, इस गाने को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। वक्त बीत गया लेकिन फिल्म वक्त का ये गाना आज भी लोगों के जुबान पर है। अनोखे कलाकारों के बीच बलराज सहाने की अदाकारी और मन्ना डे की आवाज, रवि साहब ने जहां गाने को संगीत से सजाया, अल्फाज साहिर लुधियानवी ने दिए, ऐ मेरे जोहरा जबी, अ टाइमलेस क्लासिक ऑफ बॉलीवुड फिल्म वक्त से लिया गया ये गाना।

भगवान दादा अनोखे एक्टर और अनोखे फिल्म मेकर हिंदी सिनेमा के एक पिलर माने जाते थे। इनकी अदाकारी एकदम यूनिक, एकदम अलग। उनकी केमिस्ट्री गीता बाली के साथ काबिले तारीफ रही फिल्म अलबेला में, जो कि आई थी 1951 में। सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र और भगवान दादा ने इस फिल्म को खुद डायरेक्ट भी किया। गाने को लिखा राजेंद्र किशन ने। कॉमेडी स्टाइल में जिंदगी के फलसफे को क्या खूब भगवान दादा पेश कर गए। किस्मत के हवा कभी नरम तो कभी गरम।

हिंदी सिनेमा में अनगिनत कलाकार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। एक ऐसे ही कलाकार को हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, यानी कि चलते चलते। इस फिल्म के नाम सुनते ही एक बेहद ही हसीन चेहरा दिमाग में आ जाता है, विशाल आनंद। एक एक्टर प्रोड्यूसर रहे, कम फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा पर एक गहरा छाप छोड़ गए। चलते चलते सिमी गरवाल के ऑपोजिट इस फिल्म में नजर आए। चलते चलते इस गीत से उन्हें याद कर लेते हैं, कभी उन्हें हम अलविदा नहीं कह पाएंगे।

A treasure gem of Indian ghazal music that continues to mesmerize listeners across generation. Pidhi dar pidhi, ye ghazal har kisi ke dilon tak pahunch jati hain, jahan har alfaz mein ek tareef chupa hua hai. Chandi jaisa rang hai tera, sone jaise baal. Maestro Pankaj Udas ki zubani, unki makhmali awaaz se आज भी हर कोई प्रभावित होता है इस मशहूर कलाकार को हम यादें प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं

Essential figure of Indian music, the queen of South Asian pop music, Nazia Hassan. Nazia Hassan वो कलाकार रही जो महज 15 साल की थी जब उन्होंने पाया अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड एज बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर. उन्होंने लता जी को भी इस अवार्ड में पीछे छोड़ गई. आज तक की सबसे यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ अवार्ड बनकर रह गई. महज 35 साल की थी, 35 इयर्स की थी जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ले लिया, लेकिन उनकी आवाज आज भी एक अमर आवाज बनकर रह गई. फिल्म कुर्बानी, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो बात बन जाए, उन्होंने प्लेबैक दिया जिना तमान के लिए.

हिंदी सिनेमा में हर कलाकार की अपनी खासियत होती है, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक ऐसी अदाकारा आई थी जिन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से स्थापित किया कि आज भी उनकी फिल्मों के जरिए उन्हें हम याद करते हैं। एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल, 10 साल की छोटी फिल्मी कैरियर में उन्होंने कुछ 80 फिल्मों में काम किए। दुर्भाग्यवश स्मिता पाटिल महज 31 साल की थी जब उनका निधन हो गया। एक प्रभावशाली और कामयाब एक्ट्रेस रही, शायद ही हिंदी सिनेमा इस अदाकारा को भूल पाएगी। एक गाना

एक हसीन चेहरा जिसकी पहली झलक से ही लोग बेहद ही प्रभावित हुए। उनके अदाकारी और उनकी आवाज से उन्होंने सबका दिल जीत लिया, लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बावजूद वो फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। हम बात कर रहे हैं सलमा आगा की।

स्टार आते हैं जिनकी एंट्री धमाकेदार तो होती ही है, लेकिन कुछ ही पल में इस हिंदी सिनेमा से दूर हो जाते हैं। दिग्गज भारतीय अभिनेता फिल्म डायरेक्टर मनोज कुमार के बेटे की हम बात कर रहे हैं, कुणाल गोस्वामी। कुछ ऐसा ही कुणाल गोस्वामी के साथ हुआ। अपने अभिनय क्षमता से प्रभावित करने में वे असमर्थ रहे। नीले नीले अंबर में चमकने का सपना लेकर आए थे, लेकिन ये सपना सपना ही बनकर रह गया। एक टूटे सितारे की तरह इस हिंदी सिनेमा के आसमान में गुम हो गए। नीले नीले अंबर फिल्म कलाकार का ये गाना।

पाकिस्तानी सिंगर ज़ोहेब हसन। ज़ोहेब हसन नाज़िया हसन के भाई रहे, एक अद्भुत गायक। अपने गायकी के साथ 80 के दौर में लोगों को जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया। अनगिनत सक्सेसफुल एल्बम को उन्होंने रिलीज किया, लेकिन इस एक गाने से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। फिल्म स्टार से लिया गया ये गाना।

एक mesmerizing आवाज, timeless melodies के बीच मैंने पायल है छनकाई। ये आवाज रही फाल्गुनी पाठक की। अनेकों गाने लेते आई, लेकिन ये गाना बन गया एक iconic track। प्यार करने वालों के दिलों पर ये गाना आज भी राज करता है। ललित सेन ने इस गाने को संगीत दिया और उन्होंने ही इस गाने को लिखा फाल्गुनी पाठक के लिए। पायल की खनक आपके दिलों पर दस्तक देने आ रही है।

एक एक्सेप्शनल अदाकारा, एक एक्सेप्शनल सिंगर और वो रही कंचन। उनकी वाइब्रेंट, एक्सप्रेसिव और यूनिक आवाज के लिए उन्हें लोग जानते हैं। कंचन ने अपने करियर के दौरान अनेकों गाने दिए, लेकिन एक ऐसा गाना आया था जो दिया लोगों को फुल पैक एंटरटेनमेंट, और वो गाना रहा कैसे बनी। सुनते हैं कैसे बनी कंचन जी की जुबानी।

0: घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने 50 साल पुराने कोविल के स्थान पर नए सुलिचित मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी और समाज में आध्यात्मिकता तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से 700 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 3000 से ज्यादा लापता। तोबिश में तटीय कटाव से निपटने के लिए विशेषज्ञ रेत भरने और कृत्रिम संरचनाओं के बजाय लगूनों की गतिशीलता और चक्रवातों के अनुकूल हाइब्रिड समाधान अपनाने पर जोर दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय और MFDC जल्द ही स्थानीय प्रतिभाओं को तलाशने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज सुबह सुरीचित में नए मारियामेन कोविल की आधारशिला रखी। 50 साल से भी ज्यादा समय से पुराने इस कोविल की हालत समय के साथ खराब हो गई थी, इसलिए मौजूदा ढांचे को गिराकर एक नई इमारत बनाई जा रही है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस अवसर पर अपने संदेश में आध्यात्मिकता के महत्व पर बल देते हुए इसे समाज की नींव कहा। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण और उसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सिल्वाना पागीमामन, रजनी बीकर।
1: तमिल परंपरानुसार समारोह संपन्न हुआ और विधियां चलाई गई। सुलिचित मारियामेन कोविल के लिए निर्माण के प्रारंभ का प्रतीक पुराना ढांचा 1972 का था, लेकिन इसका इतिहास इससे पूर्व 19वीं सदी से है। शर्तबंद कामगारों

0: के आगमन के साथ। सुलिचित मारियामन कोविल के अध्यक्ष मुरुगा नारायणन ने कहा, काफी समय बीतता चला गया और कोविल पुराना हो चला। पुराने ढांचे को गिराना पड़ा और इसके बदले में एक नए कोविल को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ये एक प्रतीकात्मक घड़ी है। उन्होंने भविष्य के लिए आस्था के कार्य की बात कही।
1: कोने स्पिरिचुअलिटी समय बाज टू सोसाइटी हां मन वैल्यू एंड मन रिलीजन इनकल्केड डन नो ला वी सेम मन बूसोल जा फॉर नो सोसाइटी सा रिच स्किल्चुरल की नू पेयी इन ला ऑफिस एन ग्रैंड बेनेडिक्शन फॉर नू नू बिजा कंटिन्यू फेयर टू एंड मो फेयर टू फॉर कंटिन्यू रासेंबले टू मन कंपोजेंट de la société, de la communauté mauricienne. Le gouvernement fait tout pour encourager aussi sauvegarder mon patrimoine parce qu'il nous besoin de transmettre mon culture de génération en génération. Il y a beaucoup d'organisations comme Tamil Speaking Union, Manchester Tamil Culture Center Trust qui est présent là. Notre mandat est pour promouvoir la culture et la langue tamoul, mais aussi pas juste pour promouvoir, propager. C'est grâce à une organisation pareille, comme Bancoville, à travers Maurice, qui est une communauté capable d'avancer quand on compose une culture.
0: Nye Coville ke nirman ke shuruat mangalwar ke liye nirdharit aur karya ek varsh mein pura hoga, tab yahan par kai parv manaye ja sakenge, jaise ki Kavedi adi.
2: श्रावण मास हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस महीने के दौरान विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। सप्ताहांत के दौरान श्रावण मास के समापन के संदर्भ में देश के कई इलाकों में पूर्णाहुति विधि संपन्न की गई। तो विश्व में समंदर के बढ़ते जलस्तर और इरोजन की समस्या से निपटने के लिए ज़रूरी उपाय लागू करना पहले से कहीं ज़्यादा आवश्यक हो रहा है। अनुमान है कि 2026 से हर साल कुछ इलाकों में 1 से 2 मीटर तक जमीन का कटाव होगा। इस बेहद संवेदनशील इलाके में समंदर तट, समुद्री इकोसिस्टम और आसपास के मूल ढांचों को खतरा है। रेत की भरपाई, सुरक्षा के ढांचे बनाने से लेकर प्राकृतिक सुरक्षा उपाय बनाए रखने तक संबद्ध विशेषज्ञ लगूनों की स्थितियों और तूफानों के खतरों को ध्यान में रखते हुए अब हाइब्रिड समाधान अपनाने की सलाह दे रहे हैं। सकाउनु गीता सुनरान।
3: वो विश्व में समुद्र तट का कटाव लगातार तट को नुकसान पहुंचा रहा है। रेत के बहाव को रोकने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। इनमें समुद्र तट पर दोबारा रेत डालना, लगून में ऐसी संरचनाएं बनाना जो लहरों की ताकत को कम करें और तट के किनारे सुरक्षा के लिए ढांचे बनाना शामिल हैं। डॉक्टर राजीव भीरू कहते हैं, फिलहाल दो परियोजनाएं हैं। एक में पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरे में जियो टेक्सटाइल का।
4: Liban EP, mais l'EP est implémenté avec ce qu'on appelle un géotextile, un sac géotextile.
3: लेकिन क्या ये उपाय लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे? समुद्री विज्ञान और तटीय समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव भीरू का मानना है कि समुद्र तटों के पास अब भी मौजूद पक्के ढांचे कटाव को बढ़ावा देते रहेंगे। एक दीवार रेत के बहाव को नहीं रोकती बल्कि इसे तेज करती है। सभी समुद्री पौधों को नुकसान होता है। प्लेटफॉर्म मोरिस लॉविगोनमों की आदि तिलक भी इसी राय से सहमत हैं। उनका कहना है कि समुद्र के किनारे होने वाले निर्माण की बेहतर और सख्त योजना जरूरी है। प्रकृति आधारित समाधान या प्रकृति और पत्थर के मिश्रण वाले समाधान, इनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या ज्यादा अच्छा है हर जगह के लिए। हमारे लिए ये बेहतर समाधान है। फिलहाल थोबिश को तटीय सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले इलाकों में शामिल किया गया है। यहाँ पत्थरों से सुरक्षा दीवार बनाने, दोबारा रेत डालने और समुद्र तट के विकास एवं सुधार के काम किए जाने की घोषणा की गई है।
2: वैश्विक स्तर पर खाद्य सामानों के आयात को लेकर अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए फागे खुद को फिर से व्यवस्थित कर रहा है। इस दिशा में देश के खेतीहरों और पशुपालकों के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं में बदलाव लाए जा रहे हैं। मकसद है मौजूदा चुनौतियों का

0: बेहतर सामना कर पाना और कृषि क्षेत्र की मजबूती बढ़ाना। याद रहे कि मॉरिशस में स्थानीय उपभोग का लगभग 70% भाग आयात किया जाता है।
1: कृषि उद्योग मॉरिशस का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा और रोजगार पैदा करने में बहुत ही योगदान देता है। फागे से कई किसान और पशुपालक आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि फागे की 20 से ज्यादा सहायता योजनाएं हैं और उसका मानना है कि इन योजनाओं में बदलाव करना अब जरूरी हो गया है। फागे की CEO डॉक्टर माधवी मधु कहती हैं, कुछ सहायता योजनाएं 10 या 15 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं, पैदावार की लागत, मौसम परिवर्तन, मजदूरों की समस्याएं आदि, इसलिए सब्सिडीज और ग्रांट्स पर फिर से गौर करने का समय आ गया है। अब फागे में किसी भी नई परियोजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति पहली आर्थिक सहायता मिलने के 3 महीने बाद दूसरी सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकता है। कृषि भूमि के क्षेत्रफल और कृषि किराए की अवधि को लेकर भी अब नियमों में अधिक लचीलापन है। मेजिन कोडमास्क में सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस चलाने वाले फरदीन लाल मोहम्मद इससे खुश हैं। वे कहते हैं,
2: मैं
1: और मेरा भाई दोनों के ग्रीन हाउस हैं। मेरे साथ ग्रीन हाउस हैं, टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च रोपते हैं, कंपनियों और आम जनता के लिए खेती करते हैं। बजट में ऐलान किए कदमों के अनुसार हम और दो स्कीम्स पाने के योग्य हैं, ताकि अपने कारोबार को हम बढ़ा सके। हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। ग्रीन हाउस में खेती को बढ़ावा देना, यही शेल्टर्ड फार्मिंग स्कीम का उद्देश्य है। फागे के उप निदेशक अखिलानंद जी गुलुब कहते हैं, एक व्यक्ति के पास कम से कम 400 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए 250 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस बनाने के लिए। पहले एक व्यक्ति को कम से कम 2 ग्रीन हाउस दे सकते थे, अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि पैदावार ज्यादा हो। एक व्यक्ति को अब 4 ग्रीन हाउस मिल सकते हैं और मल्टी स्पान के लिए 2000 वर्ग मीटर पर हर 500 वर्ग मीटर के लिए ग्रांट मिलेगा। मॉरिशस अपने उपभोग के लिए करीब 70% खाद्य पैदावार का आयात करता है। फागे के अनुसार ये नई योजनाएं आयात पर हमारी निर्भरता कम करने में मदद करेंगी और देश की खाद्य सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।
0: बैंक ऑफ मॉरिशस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक झूठी तस्वीर को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें केंद्रीय बैंक की गवर्नर प्रिसिला मतुगाताकू को जनता से एक फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से सावधानी बरतने और इस प्रकार की किसी भी धोखाधड़ी की स्कीम से निवेश न करने की मांग करता है। और स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, उभरते हुए स्क्रीन राइटर्स तथा सिनेमा के शौकीन लोगों के लिए ये खबर। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जल्द ही मॉरिशन प्रतिभाओं की तलाश के वास्ते एक प्रतियोगिता शुरू करेगा। देश में फिल्म उद्योग को नई गति देने के मकसद से इस परियोजना में एक मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी का निर्माण शामिल है, जिसमें एक स्थानीय स्टूडियो और कैंपस की स्थापना भी होगा। पेश हैं अंजुराम गुलाम और रजनी बिकर की ये रिपोर्ट।
3: हल्की रोशनी वाले कक्ष के द्वार पर लाल रंग के सोफे मानो कोई महोत्सव। हर कोई अपने कार्य एवं भूमिका निभाने की तैयारी में। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाना चाहता है, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन तक की सफर तक। इस तरह मॉरिशस एंटरटेनमेंट अकेडमी कायम करना, सिनेमा के एक स्टूडियो के साथ साथ मॉरिशस में एक कैंपस भी, MFDC के CEO केविन गति ने कहा। यही उम्मीद है कि बॉलीवुड का समा बंध जाए। आज जो ढांचे कायम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए तैयार खड़े हैं, साथ ही हमारी स्थानीय कहानियों को भी विदेश की ओर भेजने के लिए तैयार है। परियोजना की कुल लागत कोई 5 बिलियन रुपए। चूंकि ये रकम आसमान से तो मिलने वाली नहीं, ना ही किसी स्पेशल इफेक्ट से, अतः MFDC ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के वास्ते एक कार्यक्रम

0: का प्रस्ताव रखा। मकसद है उनसे पहली भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना। द स्टूडियो ग्रुप के फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट प्रमुख मेरेडिथ ऑरेंट ने कहा,
1: Sometimes sports and music, and at the heart of these campuses is education and training.
0: ये फिल्म स्ट्रीमिंग है, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, गेमिंग भी, कभी पोज, कभी संगीत। कैंपस में मुख्य रूप से शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा स्थानीय नौजवानों के लिए, ताकि यहाँ उद्योग कायम हो, न केवल स्टेज तैयार करें। कास्टिंग पर पॉल ब्रेट मौजूद, वे बर्तानी सिनेमा के प्रोड्यूसर एवं फाइनेंसर है, मुख्य रूप से ओस्कर वाली फिल्म द किंग्स स्पीच या लेजिस्कू द रॉ और अमेरिकी कॉमेडी फिल्म शेफ के लिए, जिसमें डस्टिन हॉफमैन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और स्कारलेट योहानसन शामिल। द स्टूडियो ग्रुप के सह संस्थापक एवं प्रोड्यूसर पॉल ब्रेट ने कहा,
2: स्मॉल आइलैंड, यू हैव मेनी मेनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आल्सो
0: यहां पर भारी संभावनाएं हैं। एक छोटा टापू है, दुनिया के कई इलाकों के लोग हैं और जियोग्राफिकली भी अफ्रीका के साथ बहुत ही अच्छे संपर्क है। पूरे महाद्वीप में सबसे विकसित राष्ट्रों में से एक, गल्फ राष्ट्रों के साथ भी बेहतरीन संपर्क है, चीन के साथ भी ये एक बहुत ही लोकप्रिय गंतव्य है। दूसरी तरफ अपना रुमाल निकाल कर रखने की तैयारी कर लीजिए, मागी माओ या तुलसी की ही तरह एक शो होगा जिनके 200 एपिसोड्स होंगे। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।
3: Sur des histoires qui vont parler de Maurice,
0: मेजावा अफ्रीका के प्रोड्यूसर अलेक्जेंड्र रिडो ने कहा, ऐसी कहानियां हैं जो मॉरिशस के बारे में बताती हैं, मॉरिशन जनता के लिए, साथ में इलाकाई दर्शकों के लिए भी। दुनिया भर में लोगों को देखने और जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह यहाँ लोग खास जिंदगी जी रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रोड्यूसरों को भी कैमरा एक्शन बोलने की चाह। मॉरिशन प्रोड्यूसर निवेन पारिमानन ने कहा, आधारशिला रख रही है ताकि 10-15 वर्षों या इससे कम अवधि में ही एक वास्तविक फिल्म उद्योग हो, हर साल कलाकार हो, फिल्म निकले। तब तक पॉपकॉर्न तैयार रखिए। MFDC की ओर से जल्द ही स्थानीय लेजेंड पर आधारित एक फिल्म प्रसारित की जाएगी। संकेत के लिए यही बता दें कि वे स्पाइडरमैन की तरह पोशाक तो नहीं पहनते, पर नग्न ही घूमते थे, एक विनाशकारी तूफान के गुजरने के बाद लोगों को डराते थे।
4: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, संयुक्त राष्ट्र ने कल जारी कम्युनिके में पहली बार नेपाल में आई आपदा के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल में हजारों लापता लोगों का पता लगाने की कोशिशें तेज की जा रही हैं। इस विनाशकारी बाढ़ से के 5 दिन बाद मरने वालों की संख्या 700 पार कर गई है और जीवित बचे लोगों के मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। विधिमासी बोरन,
5: बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के 900 से अधिक लापता कामगारों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपातकालीन कर्मियों ने एक सुरंग में हवा पंप की है और भोजन गिराया है, लेकिन अभी तक अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। 3,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। अमेरिका पहले घोषित किए गए $5,00,000 से बढ़ाकर $3.6 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस आपदा में कम से कम 750 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में 700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और चीन में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। नेपाली अधिकारी बढ़ते शवों की संख्या से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं और चीनी अधिकारियों ने कहा है कि उनके खोज दलों को अभी तक कोई और जीवित व्यक्ति नहीं मिला है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए 11 टन मानवीय सहायता लेकर अपनी चौथी राहत उड़ान रवाना की है, जिससे भारत की कुल हवाई मार्ग से भेजी गई राहत सामग्री 68.5 टन हो गई है।
4: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक आवासीय इलाके में रूसी ताकतों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है, 400 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। ये हमला यूक्रेनियन सेना के हथियारों के एक भंडार केंद्र को निशाना बनाकर किया गया था। इस पर और विदेश की कुछ अन्य खबरों पर यह अगली रिपोर्ट।
5: शुक्रवार देर रात कीव के पास एक गोला बारूद डिपो पर हुए रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 37 लोग मारे गए, जो इस साल यूक्रेन में हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। 2 महीने से भी कम समय में यूक्रेनी राजधानी के पास किसी हथियार डिपो पर हुआ ये दूसरा ड्रोन हमला था। एक लिखित बयान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों से आग्रह किया है कि वे अपने असली दुश्मन को पहचानें, उसकी योजनाओं को समझें और उसका मुकाबला करें। उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी

0: का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है और ईरान इसे दोबारा खोलने की जल्दी में नहीं है। आइसलैंड ने एक दशक पहले पिछली वार्ताओं के रुकने के बाद यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया है। एक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों के पूर्ण परिणाम सामने आने के बाद यूरोपीय संघ के खिलाफ पड़े वोटों का प्रतिशत 52.5% से 47.5% रहा। यूरोपोल के अनुसार यूरोप के संग्रहालयों में तेजी से हिंसक और परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल चोरी में दो व्यक्ति गुरुवार को आगंतुकों के रूप में वियना के अप्लाइड आर्ट्स संग्रहालय में दाखिल हुए और कुछ ही देर में करोड़ों डॉलर मूल्य का एक अनमोल 200 कैरेट का प्लैटिनम और डायमंड नेकलेस लेकर वहाँ से फरार हो गए।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मॉरिशस के लिए तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी बरकरार है जो कल सोमवार 31 अगस्त दिन के 10 बजे तक जारी रहेगी। मास्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाली जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान खासकर देश के पूर्वी दक्षिणी और सेंट्रल प्लाटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके कुछ जगहों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। जनता से खास सावधानियां बरतने की मांग की जाती है, खासकर ऊंची जगहों पर न जाएं और सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए खासकर क्रॉस विंड्स वाली जगहों पर खास सावधानी बरतें। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 4 से 6 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी जिनका असर खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों और तटीय इलाकों पर भी पड़ेगा। मछुआरों और समुद्री गतिविधियों में संलग्न लोगों से दूर समंदर और इन तटीय इलाकों पर भी न जाने की मांग की जाती है। तापमान सामान्य से कम रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 13 से 15, अधिकतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 17 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:19 पर सूर्योदय, शाम को 6 बजे सूर्यास्त होगा।

देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फिजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शुक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रेजिडेंस नाटुआ रोड ट्रायंगल गुडलैंड्स में, नाटुआ रोड ट्रायंगल गुडलैंड्स में 84 साल की 84 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सियुरानी परेस, श्रीमती सियुरानी परेस जो सोनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी कल दिन के बारह बजे इनके बेटे श्री नवीन गणेश के मकान नाथुआ रोड ट्रायंगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। अलीजाक रोड नोवेल फ्रांस में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री मनोज कुमार बैं जो मनोज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती कल्याणी बैं के मकान अलीजाक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजवेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। नंबर 9 पेयर रोबर्ट जीरो गली रोशबा में, नंबर 9 पेयर रोबर्ट जीरो गली रोशबा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्री नारायण स्वामी उचामा जो तो नारायण नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के दो बजे इनके मकान नंबर 9 पेयर रोबर्ट जीरो गली रोशबा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। मादामाजो गुडलैंड्स में 32 साल के

32 years old, श्री जेविन ग्रीधर जो चिपची नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के ढाई बजे इनके पिता श्री भगवान दास ग्रीधर के मकान मनामाजो गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाह हुई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2:30 PM सिमिट्री रोड अमोरी में 76 साल की 76 years old श्रीमती पंजाले रंगेन पैदाशी नाम जोन की, जो सरोज नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनके मकान सिमिट्री रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल में 39 साल की 39 years old श्रीमती शालिनी दनपत भवानी दीन पैदाशी नाम दनपत, जो शालिनी नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी मंगलवार 1 सितंबर को दिन के 10 बजे इनके मकान शांतिलाल दाजी स्ट्रीट रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन 1 सितंबर। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए. सीबी एनएचडीसी सुयाक और मोसेलमो ग्रीगरी के ग्राहकों को सूचित करता है कि आगामी मंगलवार 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी. मंगलवार 1 सितंबर 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी. सेबी इन ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी. इन असुविधाओं के लिए सेबी क्षमा प्रार्थी हैं. ये थी एक व्यक्ति सेबी की ओर से.
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस.

819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस

0: 一曲安然共度周日，毛里求斯广播电台听众朋友晚上好，欢迎收听晚风歌单，卸下一周忙碌皮。
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
4: शाम के 6:32 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एमफ्री रेडियो, और आप इस समय हमें सुन रहे हैं। जी हाँ, नई सोच कार्यक्रम प्रस्तुत है और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। जी हाँ, आज रविवार 30 अगस्त 2026, और ये कार्यक्रम कुछ भावगीत आप लोगों के नाम

हम करते हैं। नई सोच, नई विचार, नई उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। साथ मिलकर बस आप साथ दीजिए।

जी हाँ दोस्तों, 6:55 हुए हैं और आप सुन रहे थे नई सोच कार्यक्रम खूबसूरत गानों को लेकर। चले 7 बजे ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम हम प्रस्तुत करेंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज.
4: 7:00 PM. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हाँ, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम आप सबको. और आज का जो मौसम है कुछ ऐसा ही है. प्रस्तुत है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आरएम फ्री रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन पर. और आप लोग जुड़ चुके हैं, 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और मैं हूँ शाखा और यहाँ पर साथ निभाने के लिए. जी हाँ, और ये मौसम कुछ अलग ही कहानी कह रहा है, क्योंकि बाहर रिमझिम बारिश, हवाओं में ठंडक और फिजा में एक अजीब सा सुकून. ऐसा लगता है जैसे मौसम ने आज ज़िंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया हो. बारिश की बूंदें जब मिट्टी को छूती है ना, तो एक प्यारी सी खुशबू दिल तक पहुंचती है. तो क्यों ना इस खूबसूरत शाम को कुछ मीठे नगमों के नाम करें, दिल की बातें करें और इस ठंडे मौसम को संगीत के साथ महसूस करें. 4028070 आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और मैसेजेस कर सकते हैं 5250-6200. आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मौसम हो बारिश का, हवा हो ठंडी और साथ हो संगीत का, तो शाम अपने आप खास बन जाती है.

7:16 हुए हैं जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और आप इस समय आर एम फ्री के साथ जुड़े हुए हैं साथ देने के लिए धन्यवाद और यहाँ पर आज की पहली फरमाइश खासकर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म का नाम है जोर और ये गाना जाएगा अक्षय के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बासर रोड काठोबोन

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सात बजकर 41 मिनट हुए हैं दोस्तों। अगर दो दिल होते प्यार में तो शायद एक दिल खुश होता और दूसरा उसकी खुशी महसूस करता। प्यास जो प्यार है ना, सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की खामोशी को समझने का नाम है। दो दिल जब सच में जुड़ते हैं तो फासले भी उनके एहसास को कम नहीं कर पाते। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं अगला गाना।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज,
1: सात बजकर तैंतालीस मिनट हुए हैं दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे उन सभी लोगों के लिए जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ और यहाँ पर हम लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं और वो लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं घर पर बैठे बैठे। अगर आप भी रेडियो सुन रहे हैं और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जॉइन अस ऑन लाइव टिकटॉक RM Free Radio रेडियो मनोरंजन और पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में हमारा जो नंबर

0: है 4028070, आप इस पर फ़ोन कर रहे हैं और साथ में मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5256200। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं किरण जी, हाँ गाना जाएगा आपके नाम द बॉस के लिए। और जासमीन जी, हाँ आपके नाम मानुज पिरतिया, संजय जगू, अमृता जाड, जाहिना, लीना हलकोरी और साथ में ब्रिंडा लक्ष्मण, थैंक यू सो मच, नाइस कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। रिशान अपनी माँ अपनी दादी के लिए गाना मांग रहे हैं और साथ में श्रद्धा लखनोट, माधुरी जी थैंक यू सो मच, और आप है विश्वानी फ्रॉम बोबासर। लीना जो है गाना मांग रही हैं अपनी भतीजी त्रिशा गोकुला के नाम, जो इनके यहाँ आए हैं और खूब मस्ती कर रहे होंगे। चलिए ऐसे ही सुनते जाइए। और आप है दनी जगरू फ्रॉम गुडलैंड्स, लक्ष्मी नमस्ते आपको।
1: इरे मोती,
0: और आप है शवि, हेलो टू यू। शीतल के नाम और वन के नाम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऐसे ही साथ दीजिए, 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और शीतल जो है वो है फ्रॉम मेबर, गाना खासकर उनकी बेटी केशी के लिए, और संजय जगो के नाम। और रागिनी जो है गाना मांग रही है सभी साज हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए जो इस समय काम कर रहे हैं।

0: RM3 Radio.
1: दिलों की आवाज़।
2: चलिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम हम चलाएंगे और क्या करें, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आए, हम बस ये कामना करते हैं और हमारे गानों के ज़रिए आप खुश रहें। 7:50 हुए हैं और यहाँ पर गाना खासकर गिरीश हरलोल के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और तरुण राम, आपके नाम भी ये गाना जाएगा। माधुरी जी हैं, देवन नादीवाला फ्रॉम वैनकूवर कनाडा, थैंक यू सो मच। राधे राधे, ललिता चरण नमस्ते आपको, और गाना के साथ आप मांग रही हैं अपनी बेटी स्वीटी। और निष्ठा जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए, और आप हैं शवीना जो रहती है रोजिल, गाना आपके नाम। जेनिता, हमारी प्यारी जेनिता के लिए, और उमेश जयपाल आपके लिए भी गाना जाएगा। और जो जेनिता जो है गाना मांग रही है अपनी बहन के लिए, और दिनेश राम ननन, हाँ जी सही बोला हमने आपका नाम, जी हाँ आप इस शो को एंजॉय कर रहे हैं, आप फ्रॉम गुयाना जॉर्ज टाउन। और तेज सुनातन जी है, हेलो टू यू। विशा, शीतल, इंदिरा नमस्ते आपको, इंदिरा जी जो है गाना मांग रही है राजेश ओगा और प्रकाश के नाम। समृता, आपके लिए भी गाना जाएगा। सकुन और फिल्म का नाम है दिव्या शक्ति, जी हाँ कुमार सानू की आवाज़ में अगला गाना। दिनेश गोपी, हेलो टू यू। केसरी, कैसे हो। और वीना गंगाधर जो है गाना मांग रही हैं अपने हस्बैंड के लिए जो इस समय बीमार है, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चलिए हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे बहुत ही प्यारी फिल्म है और आपने देखा भी होगा 1942 A Love Story जी हाँ और गाना खासकर दाहेन श्वेता रवीश प्रिशा लव शाह और आपादू फैमिली जो रहते हैं रोशनवा और साथ में शंका और देविया नियस उनके लिए हाय हेलो टू यू और आश जो है गाना मांग रही है विक्षा और विदिशा के लिए जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं सो बों को आश टू देम ललिता चरण आपके पति धनराज के लिए और तिलक कुमार हेलो आप

माधुरी जी हेलो और आप हैं कीर्ति प्रणाम धनवंती चितू है गाना मांग रही हैं किशन रोहन और बेबी हीरा तियाज और यास्मिन पिया बॉक्स गेनिशा और रवि जो है गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी शालिनी के नाम और बेटा जो है नीरव अभिता का हेलो टू यू और साथ में श्यामा पिदाताली आपके लिए भी और नर्वदा आज आपका जन्मदिन है तो आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पूरे एमबी सिंह टीम की ओर से सुखज के नाम रूपा भगन आपके लिए इस रिमझिम के मौसम बारिश के मौसम में ये प्यारा सा गाना 8 बज चुके हैं

0: प्यार दिलों का मेला है और यहाँ पर दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं ये प्यारा गाना और साथ में गाना जाएगा इंदु के लिए और साथ में संजना तो ताहम आपके लिए भी, रेशमा सुगाजी, कविता नुरकु और एंजल जो है गाना मांग रही हैं, शायाना और सुल्ताना जहा और अजीम के लिए
1: क्या हुआ है,
0: और प्यारी सुदेवी जी के लिए भी
1: क्या हुआ है, क्यों है?
0: हर्षियाना आपके नाम

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 8:10 हो गया दोस्तों और यहां पर हमें सुन रही है जिप्सी जिप्सी आप गाना मांग रही है अपनी सहेली के लिए सहेलियां जो है पाम दी ईसा फ्रॉम डामिनी और यान जो है रहते हैं ऑस्ट्रेलिया उनके लिए भी गाना जाएगा और आप है चलेसु देवी जी गाना मांग रही है बेटी दीक्षा और साथ में बेटा दिनेश और हमारे लिए भी थैंक यू सो मच खासकर रेशमा विश्वामी और दामी के नाम और आप है आकाश चेतन मनसुख फ्रॉम बाबू और वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद योगिता नमस्ते टू यू उषा स्वाम्बो हाय और काजल जो है थैंक यू फॉर लिसनिंग चले सागर का ये खूबसूरत गाना जैसे कि हमने कहा कुछ 80s और 90s की फेवरेट पॉपुलर गाने जी हाँ लोकप्रिय गाने जो हैं आपके नाम हम चला रहे हैं आप ही हमें सुन रहे हैं फ्रॉम होम जी हाँ और एम फ्री रेडियो के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं

0: You're listening RM3 Radio. दिलों की आवाज,
1: आज बजकर 17 मिनट हुए हैं। कहते हैं ना, प्यार सिर्फ एक लफ्ज है नहीं, एक खूबसूरत एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। तो आज के इस खूबसूरत पल को उसी प्यारे एहसास के नाम करते हैं। और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे खासकर शर्मिला सेवक के लिए, और गाना वो मांग रही है रोमांटिक गाना अपने पति के लिए। और आप है रेशमा, शाविना जो है अपनी बेस्टी जहरीन के लिए गाना मांग रही है, और आप है अनीजा अहमद, थैंक यू सो मच। जाना के लिए गाना जाएगा, और शोभा जी गाना मांग रही है अपनी बेटियां अनुषा श्रविना के नाम। ओ कृष मोहन, हेलो टू यू, हाउ आर यू, आपके नाम भी गाना हम चलाएंगे। और साथ में मोहम्मद के लिए, जी हाँ, ये गाना खास कर आपके नाम। होप यू विल एंजॉय राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:33 हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं शशि तुलसी जी। आज उनका जन्मदिन है, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद टू यू। सुरेखा जी आपके नाम गाना जाएगा अगला गाना साथ में अंशु के लिए। और आप हैं विशाल, हेलो।

टू यू स्वस्ति के लिए भी आग लगाना और प्रिस एंजल गाना मांग रही है अपने हस्बैंड सुभाष के लिए जो बहुत प्यार करते हैं और जी हाँ सुरेखा जी गाना मांग रही है अपने हस्बैंड आनंद कटवाहु के लिए और मृणल भूली आपके नाम और हस्बैंड नीतीश के लिए भी अच्छा होता अगर आप भी आपका नाम लिखते और प्रीति सिडाम हेलो टू यू गाना जाएगा आपके लिए और सिडाम फैमिली के लिए और प्यारी आयशा के नाम जो जुड़ चुकी है थैंक यू सो मच

चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर गाना खास कर हम चलाएंगे रेहाना के लिए, जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स। थैंक यू सो मच। गाना मांग रही है फ्रॉम फिल्म सरक, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। जी हाँ, ये गाना हम चलाएंगे और साथ में नीना के लिए, गावी के लिए। और आप हैं चांदनी हरिराम, आपके नाम जाएगा सुनील भैरवाल आपके लिए। और हेमा जो है अपने प्यार, अपना प्यार नितिन के लिए गाना मांग रही है शाइना। और विलाशा, शिमला, शिमर, कोमल, हेलो लवली म्यूजिक, थैंक यू सो मच। और ये गाना खासकर हमारे सभी लिसनर्स के लिए जो घर पर बैठे हुए रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं रोमांटिक मौसम

कम है लेकिन फिर भी कल उठकर काम पर जाना है। मौसम चाहे अच्छा हो या खराब, काम पर जाना होगा। सो चलिए गानों के साथ साथ आप खूब एंजॉय कीजिए, खूब रिलैक्स करें।

चलिए बाजीगर का ये खूबसूरत गाना हम चला रहे हैं, खासकर रफीक मोहित जी जो रहते हैं तायक उनके नाम, और यहाँ पर रेशमा पूरा निर्माला मेघनाथ रेखा शारदा सरस्वती और राकेश तो अकल के लिए उगेश दुला जो मिया नाजिया आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे, और आप हैं सिमी फ्रॉम इंग्लैंड, जी हाँ लव फ्रॉम मॉरिशस चलिए, और हमारे साथ नितिश भी है, थैंक यू सो मच, और आप है चकोरी रेशमा फ्रॉम नाम तो नहीं बताया, और आप है चिया फ्रॉम सैपिया, थैंक यू सो मच, राजा जी है थैंक यू सो मच, और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला, आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ दीजिए हमेशा, हंसते मुस्कुराते रहिए, एक और मुलाकात के लिए हम इंतज़ार करेंगे, तो चलिए सिमी जो है गाना मांग रही है आकुजिया फैमिली जो रहती है रॉसबेल, चलिए थैंक यू सो मच, 7:52 हुए हैं, उषा को दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:10 हो गए बा हमने से जुड़ल हो जा एम टू और एम फ्री पर श्रोतागण यही है तो हर मनपसंद रेडियो चैनल जिकर पर रोज के तो हर खातिर प्रोग्राम चलेला भोजपुरी तड़का तो हर स्वागत उषा करता बरका बरका नंबर वा मिलाल 402-4-5 और अपन गीत की मांग कर फौरन हमनी से तो हर बात भी हो जाए और फरमाइश भी पूरी हो जाए हम तो हर साथ हाय रात की 11 ले तो चल ये कार्यक्रम वा जारी रखा और अगला गीत खासकर चलो भोजपुरी बचा बाजे बॉयज के गावल गीत इंद्रानी जी खातिर जो हमने सुना था भूबासे से

घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:24 हो गल पा भोजपुरी हमनी के संस्कृति के एगो अहम हिस्सा है। एक साथ कबो नहीं छोड़िया नई पीढ़ी के वे संस्कृति से अवश्य औगात करिया और ये भाषा हमेशा जीवित रही। बड़ा काम बातें मुश्किल बा पर असंभव नहीं है।

ता चला अगला गाना खासकर अनीता जी खातिर जोन रही लाफी कॉम्फ्लाक और ये बखत हमने के सुनता गाना खासकर मांगा तवंजा पति राज खातिर बेत्यंतिश अंकुश बहु मनीषा आशीमा और पोती हिमेशा के लिए और आदिया के नाम और हमारे सभी रेडियो मॉरिशस और ये रेडियो मनोरंजन के सभी सुनने वालों के लिए

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी जगत के जोन चमकता सितारा बहते ओ तह हमने के गायक कलाकार लोगन परंतु भोजपुरी के सागर के जोन माही होवन ओ तो लोग श्रोतागण होवा जा काहे कि तोहर बिना त भोजपुरी तड़का के कोनो मोल नहीं हो पर तोहर साथ

ई प्रोग्राम हो जाला अनमोल। तो चला रात के 9:40 अगला गाना सुदेवी जी खातिर जुन रहीला पोम्पलमूस और बखत हमने के सुनाता गाना एकर खातिर और परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:53 हो गल बा श्रोता लोग बाहर देखबा तब बहुत तेज हवा बहता इतना ठंडा करा था कि का तोरा बोली है ना अपन ख्याल रखिया और गर्म में रहिया साथी लोगन पूछा था हवन कि हमने ठंड के मौसम में कैसे काम करा था जानेला तो हर प्यार के नतीजा है चाहे गर्म हो या ठंडा हमने के कर्तव्य है चाहेला निभाए निभाए खातिर और यहाँ पर ही निशा जन रहीला वाकवा और ये बखत जुरलबा गाना मांगा मांगा तवंजा पति देव खातिर और बीता कुश खातिर

सुनो बस तू ऐसे काम पड़ल वहां।

भोजपुरी तड़का तड़का।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:18 हो गल बा श्रोता लोग नेपाल में देखला कितना भीष्म भार उठल हाल देखबा करे जा कांप गल इतना कोई के जान चल गल कितना लोगन दुख से तटपट हो अंजा चला सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करी जा कि जल्द ही सब कुछ हुआ पर स्थिर हो जाए और या भोजपुरी तर्क का कार्यक्रम तो हर नाम और धर्म जी जो रहिला बेल रोज और ये बखत हमने के सुना था साथ देने खातिर बहुत धन्यवाद ये गाना तो हर खातिर और जितना कोई बखत काम करता और गाड़ी चलावता तो हर खातिर ये गाना कृषि के गावल गीत

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: संगतिया लोगन संगीत के असर त जन्म भर होला संगीत के लिए त बहुत मेहनत और तपस्या करे के चाहे चला अगला गीत माहिन जी खातिर और ओ रहला पालमा और गाना मांगा तवन जापन खातिर पूरे देवनाथ परिवार खातिर और संगे धर्म पत्नी मीला खातिर

गते गते हमने प्रोग्राम के अंत तक आ गए लीसा प्यार से साथ दिला बहुत जल्दी तो हर सेवा में उपस्थित होप

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। स्वीकार कर लीजिए, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बड़े प्यार से सारे म्यूजिक लवर्स का हम स्वागत करना चाहेंगे इन सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

कभी रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था बल्कि घर का एक हिस्सा था। आज भी वही एहसास लेकर हम आपके साथ हैं, लेकर आए हैं वो गीत, वो पीढ़ियों को जोड़ने वाला, ऐसे खूबसूरत नगमे जो चुन चुन कर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में, आपका सुनहरे पल। आप कहीं से भी अगर हमारा साथ दे रहे हो तो ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक ऑन रेडियो मॉरिशस।

एक गीत और हजार यादें, बस इसी खूबसूरत रिश्ते का नाम है सुनहरे पल। तो जल्दी से अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और दिल को इन सुरों के हवाले कर दीजिए, क्योंकि अगला नगमा जो हम पेश करने वाले हैं वो सीधे आपके दिल को छू लेने वाले हैं।

आपके प्यारे से दोस्त आज की निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता महसूस किए जाते हैं, जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर आपके नाम

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आंखें जरा बंद कर लीजिए और इन गीतों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पलों को याद कीजिए। शायद आज का कोई गीत आपको किसी अपने के और करीब लेकर आए, और हम दिल से उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए आपके लिए। तो चलिए जी, सुरों में खो जाइए और गुनगुनाइए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: दिल जला।
1: पुरानी फिल्मों के गीत आज भी इसलिए अमर हैं क्योंकि उनमें सिर्फ सुर नहीं दिल की सच्चाई बसी हुई है। आइए उन अनमोल नगमों का बस स्वागत करते हैं दिल से इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हम दिल से उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आपने दिल से एंजॉय किया और आपकी यादों को आपने याद करते करते बस मुस्कुराते रहे थ्रू आउट दी होल शो। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। आप हमें प्यार से इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल के शो में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: This is Radio Marxus.
1: 您好
2: Assalamualaikum. Welcome to Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shudra Vandiriki Hudiya Purvaka Namaskaram.
5: Ungalani Varakkam Vanakkam.
6: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस
2: गे ऑन टैक नाउ टैक।